हमारे जिस्म में कहीं कोई कमजोरी आ जाती है तो उसको मजबूती देने के लिए शरीर के उस विशेष अंग पर हम केंद्रित हो जाते हैं। इसी प्रकार से भले ही सत्संग के प्रति हमारे उत्साह होते हैं, सेवा के प्रति उत्साह होते हैं, लेकिन अगर इबादत में कहीं कमजोरी है तो इसको भी मजबूती देने की जरूरत है।

दोस्तों बोजान एफएम नमत अशारिया सिफर रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी हुन बोजान रोजियो पनन पसंदीदा बात।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो, सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।

आइए कुछ अच्छा सुनते हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो।

वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। आप जी सुन रहे हो 90.0 FM ते रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा। आप दा अपना रेडियो, आप जी दी आवाज दिल तो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा।

रेडियो विदस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज पर घर घर की आवाज रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी का

0: बढ़ाए अपना बिजनेस, एडवर्टाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।
2: प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल जगत एपिसोड 2। आज के हमारे मेहमान है नन्ही गुड़िया गुरसीरत कौर। प्रस्तुत करेंगे RJ शिवानी। रिकॉर्ड किया राहुल अल्यान ने। एडिटिंग व निर्देशन भारत सोपोरी।
0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो। मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त RJ शिवानी, लेकर आई हूँ आज आपके लिए बाल जगत कार्यक्रम का एपिसोड 2, जिसमें हम हमारे देश और अम्बाला के बच्चों से बात करते हैं, जानते हैं उनके मन की बात, अपने प्रति, अपने माता पिता के प्रति और देश के प्रति, और वो अपने जीवन में क्या बनना चाहते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं अम्बाला सिटी से एक होनहार बेटी, जो डांसिंग, ड्राइंग, एक्टिंग और बहुत सारी गतिविधियों में व्यस्त है। आइए जानते हैं इनके बारे में और करते हैं स्वागत, अभिनंदन नन्ही सी गुड़िया गुरसीरत कौर का। गुरसीरत, आपका स्वागत, अभिनंदन FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर।
3: थैंक यू सो मच।
0: कैसे हैं आप?
3: मैं ठीक हूँ।
0: सबसे पहले अपना परिचय हमारे श्रोताओं को दें, ताकि आपको वो अच्छे से जान पाए।
3: मेरा नाम गुरसीरत कौर है, मैं सोहनलाल देवी गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हूँ। मैं 5th क्लास में पढ़ती हूँ। मैं 11 साल की हूँ।
0: आप ड्राइंग, डांसिंग, एक्टिंग, मॉडलिंग करती हो इतनी से छोटी उम्र में? क्या आप डांसिंग सीखती हो और कहाँ से?
3: मैं सीखती हूँ प्रेमनगर प्रिंस डे डांस अकेडमी, वो मुझे बहुत अच्छा डांस सिखाते हैं।
0: अच्छा, तो आपके प्रिंस सर आपको क्या सिखाते हैं?
3: डांस सिखाते हैं, और अगर मेरा मॉडलिंग का इवेंट होता है तो मॉडलिंग भी सिखाते हैं मुझे।
0: अच्छा, एक्टिंग और मॉडलिंग में आपने आज तक क्या क्या सीखा है और क्या क्या किया है?
3: एक्टिंग मॉडलिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है, और डांस भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, और एक्टिंग में मेरी एक फिल्म भी शूट हो चुकी है, तो वो अभी नहीं पता कब रिलीज होगी।
0: बहुत बढ़िया, आप इतनी क्यूट और स्वीट हो, शरारती तो करती होंगी ना?
3: थोड़ी थोड़ी।
0: घर पर, स्कूल में, थोड़ा विस्तार से बता दो।
3: घर पे इतनी नहीं करती, स्कूल में फ्रेंड्स के साथ करती हूँ थोड़ी।
0: घर में मम्मी से डर लगता है?
3: दोनों से लगता है, पापा मम्मा से।
0: अच्छा, भाई के साथ प्यार और तकरार कितना है?
3: दोनों मेरा बराबर ही है।
0: अच्छा, दोनों बराबर ही है, बहुत बढ़िया। जब भाई के साथ नाराजगी होती है तो मनाता कौन है और जीतता कौन है?
3: मनाता तो कोई भी नहीं, अपने आप ही हम कर लेते हैं।
0: खुद ही पैचअप कर लेते हैं, बहुत बढ़िया। वैसे आप इतनी स्वीट हो तो मुझे लगता है शायद आप मना भी लेती होंगी भाई को, कि बड़ा है ना भाई आपसे।
3: थैंक यू सो मच।
0: अच्छा, शरारते कौन ज्यादा करता है, भाई करता है कि आप करते हो?
3: मैं ही करती हूँ शायद।
0: आप ही करते हो? अच्छा, कि आप दोनों में बहुत प्यार है।
3: हाँ जी।
0: तकरार के साथ साथ प्यार भी है। क्या क्या शरारते करते हैं आप दोनों?
3: अगर हमारी लड़ाई हो जाती है तो मम्मा ही कई बार डांटते हैं, तो दोनों अलग अलग होके बैठ जाते हैं हम, तो फिर जब कुछ भी मतलब टीवी देखते हैं तो कभी कोई आ जाता है देखने, कभी कोई आ जाता है, इसके बीच
0: रिमोट की लड़ाई होती होगी।
3: हाँ जी।
0: और टीवी शोज के लिए पलटते हो कि मेरे पसंद का चलेगा?
3: हाँ जी।
0: आपका फेवरेट शो कौन सा है?
3: मैं कार्टून ही देखती हूँ।
0: अच्छा, कार्टून देखती हूँ।
3: हाँ जी।
0: आइए आपको एक गाना सुनाते हैं जो फेवरेट है गुरसीरत कौर का।

0: मॉडलिंग में आपने कौन सा टाइटल जीता है?
1: मैंने मिस पंजाबन का जीता है, वो था अमरपाली पैलेस में, और मैंने मल्टी टैलेंट शो का जीता है, वो भी था वो था डीएवी हाई स्कूल में, और मैंने बीट ऑन फ्लोर जीता है, वो यमुनानगर में था, और बस मॉडलिंग में इतने ही जीते हैं, डांस में बहुत सारे विन करे मैंने।
0: जी बहुत सारे टाइटल्स हैं आपके पास, और ये अपने ही स्टेट में थे हरियाणा में या अदर स्टेट में भी आपने जाके जीते हैं ये?
1: नहीं, मैंने हरियाणा में ही थे।
0: अच्छा,
1: और मैं रिवाड़ी भी जा चुकी हूँ, रोहतक भी जा चुकी हूँ, वहाँ से रिवाड़ी पे मेरा स्टेट लेवल का था तो मैं वहाँ से थर्ड प्राइज लेके आई थी, और रोहतक में से मैं फर्स्ट प्राइज लेके आई थी।
0: बहुत बढ़िया। और इनाम में आपको क्या क्या मिला है आज तक?
1: मुझे ट्रॉफीज मिली है, शीशे मिले हैं, क्राउन, सर्टिफिकेट्स और मेडल्स।
0: आपके लिए ट्रॉफी जीतना क्या मायने रखता है?
1: मुझे बहुत खुश होती हूँ मैं जब ट्रॉफी लेके आती हूँ मैं, और लगता है कि हाँ मैंने आज मेहनत करी थी बहुत ज़्यादा, और मम्मा पापा भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, फैमिली मेम्बर सारे खुश होते हैं मेरे जब भी मैं ट्रॉफी लेके आती हूँ।
0: हम चाहेंगे आप आगे ऐसे ही और भी ट्रॉफीज जीतते रहें, अपने टैलेंट को शो करते रहें सबको, और एक अच्छे मुकाम पर पहुँचे।
1: थैंक यू।
0: मम्मी पापा आपको कितना सपोर्ट करते हैं?
1: मुझे मम्मी पापा बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, और मुझे भी लगता है कि हाँ मैं उनका सपना पूरा करूँगी, वो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है।
0: साथ में जाते होंगे मम्मी पापा आपके जहाँ भी आप इवेंट्स पे जाती होंगी?
1: हाँ जी, मम्मा पापा साथ में जाते हैं।
0: आप पढ़ाई और काम में कैसे बैलेंस बनाते हैं? स्कूल का होमवर्क, सोना, जागना, खेलना, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं बच्चों पर, तो आप इन सबको मैनेज कैसे करते हैं?
1: पहले मैं सुबह मॉर्निंग में स्कूल जाती हूँ, स्कूल से आके फिर रेस्ट करके दो थोड़ी सी, तो फिर मैं जाती हूँ डांस क्लास में, डांस क्लास के बाद फिर आके फिर थोड़ी सी रेस्ट करके फिर मैं ट्यूशन जाती हूँ, ट्यूशन से आके फिर घर पे जाती
0: हूँ। इन सब के बीच में पढ़ाई को भी टाइम दे पाते हो आप?
1: हाँ जी, अगर मतलब ट्यूशन से आके थोड़ा सा ब्रेक दे के फिर मैं स्टडी भी करती हूँ अपनी।
0: ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कल्चरल एक्टिविटी से आप क्या समझते हैं और पढ़ाई पर कितना ध्यान देती हो?
1: कल्चरल एक्टिविटीज में बहुत अच्छे से करती हूँ, और टीचर्स भी मुझे स्कूल के बोलते हैं कि इधर आ जाओ इधर आ जाओ, पर इतने सारे में तो मैं कर नहीं पाऊंगी ना, तो एक में ही जाती हूँ, और पढ़ाई भी मैं उसको भी मतलब डांस जितना मैं डांस करती हूँ उतनी ही मैं पढ़ाई भी करती हूँ।
0: बहुत बढ़िया गुरसीरत, क्योंकि पढ़ाई भी आजकल बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और मुझे लगता है जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं जितना आपको जान पा रही हूँ कि आप अपने स्कूल के सभी फंक्शंस में पार्टिसिपेट करती होंगी और वहाँ भी बहुत अच्छा कर पाती होंगी, है ना?
1: हाँ जी।
0: और टीचर्स की फेवरेट होंगी पक्का?
1: हाँ जी।
0: नाच में कौन सी विधा आप करते हैं?
1: पंजाबी डांस करती हूँ मैं।
0: पंजाबी डांस, गिद्दा करते हैं?
1: गिद्दा, भंगड़ा, ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं यही करती हूँ।
0: सबसे बेस्ट कौन सा कर लेते हो आप?
1: भंगड़ा कर लेते हैं।
0: भंगड़ा कर लेते हैं।
1: हाँ जी।
0: आपको अगर कहा जाए कि आप केवल पढ़ाई पर ध्यान दें, डांस और एक्टिंग छोड़ दो, तो आप किसको चुनेंगे?
1: मैं डांस को नहीं छोड़ सकती, और पढ़ाई भी मैं उतना ही रखूंगी जितना मैं डांस को करूंगी, और मुझे पता है कि अगर डांस करा तो पढ़ाई में नहीं, अगर पढ़ाई करी तो डांस भी कर, मुझे डांस बहुत अच्छा लगता है, तो मैं दोनों को ही चुनूंगी।
0: दोनों को ही चुनना चाहिए, और दोनों को साथ लेकर भी आप आगे चल सकते हैं, सब दोनों में अगर बराबर मेहनत करोगे तो आप एक दिन जरूर किसी न किसी मुकाम पे पहुंचोगे, है ना?
1: हाँ जी।
0: तो हम दोनों को साथ लेकर भी चल सकते हैं। अब हम चाहेंगे गुरसीरत कि आप एक गाना गुनगुना दें हमारे श्रोताओं के लिए, जो आपको पसंद हो।

0: बहुत बढ़िया गुरसीरत, अब चलते हैं आपके स्कूल। आपकी सबसे अच्छी सहेली कौन सी है?
1: मेरे दो फ्रेंड्स हैं, एक का नाम जन्नत है वो, और एक राधिका है। हम तीनों इकट्ठे बैठ के पढ़ते हैं और इकट्ठे बैठ के मस्ती भी करते हैं। कोई भी एक्टिविटीज हो तो हम इकट्ठे ही पार्टिसिपेट करते हैं।
0: क्यों अच्छी लगती है वो आपको?
1: हम एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो मुझे मतलब मेरे साथ ही रहती है उस मतलब जब तक वो खत्म नहीं होती प्रॉब्लम तब तक रहती है।
0: ये बहुत अच्छी बात है, दोस्त होने ही ऐसे चाहिए जो मुश्किल वक्त में मुसीबत में आपका साथ दें। और बचपन से ऐसे दोस्त हमें बनाने चाहिए जो हमेशा हमारे साथ रहें।
1: हाँ जी।
0: चलो अब एक और बात बताओ हमें, आप सभी दोस्त मिलकर कौन सी शरारतें करते हो?
1: कई बार हमारा पढ़ने का नहीं मन होता तो हम टीचर को बोल देते हैं कि हम पे बुक नहीं है, कॉपी नहीं है, तो फिर भी टीचर हमें बोलते हैं कि रफ नोटबुक में करो पर करो। इसलिए ये हम मतलब यही करते हैं हर बार अगर हमारा पढ़ने का नहीं मन होता तो।
0: बस एक ही शरारत करते हो और कोई नहीं शरारत करते क्या? मुझे बता दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी।
1: नहीं, रिसेस में हम खेलते हैं, मैम को पता ही लगता हम कब खेलते हैं कब नहीं।
0: अच्छा, अब खुर्सीरत आप ये बताओ कि आपको स्कूल के लिए तैयार कौन करता है? आपकी मम्मी आपको खाने में क्या क्या देती है स्कूल में?
1: मुझे मम्मा करते हैं रेडी स्कूल के लिए, और खाने में जो मैं बोलती हूँ वो देते हैं मम्मा।
0: पर कुछ तो होगा ना फेवरेट आपका कि मुझे आज यही लेके जाना है, या होता है बच्चों को कि ये मेरा फेवरेट फूड है ना? क्या है आपका?
1: मैक्रोनी।
0: मैक्रोनी, वेरी गुड। बट वो सूजी का खाते होंगे ना आप? मैदे का तो नहीं खाते?
1: नहीं, मैदे का ही खाते हैं।
0: मैदे का खाते हो, चलो कभी कभी खाने में कोई नुकसान नहीं है ना?
1: हाँ जी।
0: आपके लिए आपकी माँ क्या मायने?

0: सकती हैं।
1: मेरी मम्मा, मुझे लगता है कि हाँ वो वर्ल्ड की सबसे अच्छी मम्मा है, और पापा भी अच्छे हैं सबसे, और मम्मा मतलब जो मैं बोलती हूँ मेरी भी बात मानते हैं, मैं मम्मा की बात भी मानती हूँ, और मम्मा मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, पापा भी करते हैं। मुझे लगता है कि हाँ वर्ल्ड बेस्ट मॉम है मेरी।
0: माँ होती ही सबसे प्यारी है, सबकी माँ और सबसे ज्यादा माँ ही होती है बच्चों के लिए, जो बहुत ध्यान रखती हैं, प्यार करती हैं चीजों का। पापा भी करते हैं, पर बच्चे थोड़ा माँ से कनेक्ट ज्यादा कर पाते हैं क्योंकि वो सारा टाइम रहते हैं ना उनके साथ।
1: हाँ जी।
0: तो मम्मी होती ही बहुत अच्छी। माँ एक बहुत खूबसूरत शब्द भी है।
1: हाँ जी।
0: लगता ही आपको देख के कि आपके और आपका मम्मी का कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छा है, क्योंकि वीडियोस में भी हमने आपके देखा था कि वो आपको बता रही थी कि वो कैसे आपके ड्रेसेस तैयार करती हैं।
1: हाँ जी।
0: कैसे आपके साथ जाती हैं, सपोर्ट करती हैं। तो एक बहुत खूबसूरत रिश्ता है आप दोनों का। आपने टैलेंट ऑफ पंजाब में हिस्सा लिया, इसके बारे में बता दो।
1: टैलेंट ऑफ पंजाब मतलब एक टीवी शो है जो फिदा चैनल पे आएगा, अभी रिकॉर्डिंग हो रही है उसकी, तो आएगा। मैंने उसके 4 राउंड्स कर लिए हैं और 4 राउंड्स में मैं टॉप पे ही रही हूँ, और मुझे अच्छा भी लगता है। और ये था पंजाब में, फतेहगढ़ साहिब में था।
0: आपने वहाँ से क्या सीखा?
1: मैंने वहाँ से सीखा कि हाँ, और बच्चे भी बहुत अच्छा करते हैं, उनको भी मतलब उनको भी मिलना चाहिए कि हाँ उनको भी कोई कोच मिलना चाहिए, कोरियोग्राफर मिलना चाहिए, जैसे मेरे पास है उनके पास भी होना चाहिए।
0: आप एक संदेश देना चाहते हैं और सभी बच्चों को कि जैसे आपके पास अच्छे कोचेज हैं, मम्मी पापा हैं, है ना, सपोर्ट करने वाले आपके पास बहुत से लोग हैं, सबको अगर मिले तो हर कोई आगे जा सकता है।
1: हाँ जी।
0: आप अपने मम्मा पापा को क्या कहना चाहते हो, क्या वो आपके मार्गदर्शक हैं?
1: मेरे मम्मा पापा बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। मेरे पापा मुझे हर कॉम्पिटिशन्स में लेके जाते हैं, और मम्मा मेरी ड्रेसेस रेडी करती है, बहुत सुंदर सुंदर ड्रेसेस बनाते हैं मम्मा मेरे। पापा मुझे मतलब वो दूर हो जाए तब भी पापा मुझे लेके जाते हैं, और मम्मा मेरी सुंदर से सुंदर ड्रेसेस बनाते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा गुरसीरत आपने, क्योंकि मम्मी पापा का जब तक सपोर्ट ना हो साथ में, तो आप अभी इतने छोटे हैं, आप कहीं जा नहीं सकते, है ना, उनका सपोर्ट हाँ बहुत जरूरी है। और क्योंकि जो आप सपने देख रहे हैं उनको पूरा करने में आपकी वो मदद कर रहे हैं। आप डांस कैसे सीखते हो, साथ ही जिनसे आपने सीखा है उन गुरुजन को आप क्या कहना चाहोगे?
1: मैं डांस प्रेमनगर से सीखती हूँ, डांस एकेडमी, प्रिंस धीमान सर। प्रिंस धीमान सर भी बहुत ज़्यादा अच्छे, वो मुझे बहुत अच्छा डांस सिखाते हैं, और जहाँ भी मेरी मिस्टेक होती है उसको रोक के डांस को फिर बताते हैं कि हाँ ये आपकी मिस्टेक है तो इसको अच्छे से करो।
0: आपने किस उम्र से डांस करना स्टार्ट किया था? वैसे तो आप अभी बहुत छोटे हो, 11 साल के ही हो, पर आप कब से डांस सीख रहे हो?
1: मुझे शुरू से ही शौक है डांस का, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है डांस।
0: स्कूल में भी कल्चरल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हो, टीचर्स कितना सपोर्ट करते हैं, उनके नाम भी बताओ, और क्या कहना चाहते हो या कोई मैसेज देना चाहते हो टीचर्स को, हमें वो भी बता दो।
1: कल्चरल एक्टिविटीज में मैं मतलब करती करती हूँ हर बार, और टीचर्स जोन से ऑल टीचर्स हैं मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, एक टीचर नहीं है कि हाँ ये ज़्यादा करते हैं, सारी टीचर्स ही मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं।
0: उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे?
1: मैं कहना चाहूँगी इनके लिए कि हाँ मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहे, और मुझे मतलब और कल्चरल एक्टिविटीज में करवाएं, और थैंक्स करना चाहूँगी उनका, उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट करते हैं और हर कल्चरल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करवाते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा गुरसीरत आपने, क्योंकि जैसे मम्मी पापा होते हैं वो सपोर्ट करते हैं, ऐसे टीचर्स अच्छे गुरुओं का होना, चाहे वो आपके डांस के हो चाहे वो आपके स्कूल के हो, जब तक उनका आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा, उनका साथ नहीं मिलेगा, आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे जहाँ तक आप पहुँचना चाहते हो, उस मुकाम पर नहीं पहुँच पाओगे। एक अच्छे टीचर का होना लाइफ में, अच्छे गुरु का होना लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है, और इस चीज को आप इतने छोटे से समझते हो, ये बहुत बढ़िया बात है।
1: हाँ जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है टीचर्स, पेरेंट्स मुझे इतना सपोर्ट करते हैं।
0: उन्होंने भी आप में देखा कि आप में वो टैलेंट है, आप में वो बात है, या आप वो ड्रीम्स देखते हो तभी वो भी आपको सपोर्ट करते हैं, इसलिए, है ना?
1: हाँ जी, मैं चाहूंगी कि जो टीचर्स मुझे सपोर्ट करते हैं वो और मतलब और जोन से भी हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनको ही सपोर्ट करें।
0: बिल्कुल सही कहा गुरसीरत आपने। आपके स्कूल की प्रिंसिपल आपकी बहुत तारीफ करती हैं। क्या जादू किया है आपने उन पर? क्या कहना है प्रिंसिपल मैम से?
1: प्रिंसिपल मैम भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं और वो भी मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। अब जैसे कोई भी कॉम्पिटिशन होता है मतलब टीचर्स को बुला के कहते हैं कि हाँ इसको ले लो इसको ले लो, सबसे पहले मेरा ही नाम लेते हैं मैम। और मैम को भी अच्छा लगता है कि हाँ हमारे स्कूल की एक स्टूडेंट है जो इतनी दूर दूर तक जा आई है और इतने सारे कॉम्पिटिशन्स में विन करके आई है।
0: बिल्कुल, क्योंकि आपने अचीव ही इतनी सी उम्र में आपने बहुत कुछ अचीव किया है, इसलिए वो भी मतलब आप पे बहुत ज्यादा प्राउड फील करती होंगी।
1: हाँ जी।
0: आपने लेटेस्ट फिल्म कौन सी की है? क्या सब्जेक्ट था उसका? क्या रोल था आपका उसमें? फिल्म का मैसेज क्या था?
1: अभी अभी मैंने एक फिल्म की है, उसका नाम एडिक्शन है और उसमें मेरा रोल नायरा का था। और उसका मैसेज है कि बड़ों को और बच्चों को ज्यादा मोबाइल फोन नहीं चलाना चाहिए।
0: बहुत ही बढ़िया मैसेज है इसका, और ये बात बिल्कुल सही है कि हमें बड़े हों या बच्चे हों, आजकल हमें एडिक्शन हो चुका है मोबाइल का, और जिससे हम जितना ज्यादा दूर रहें उतना ही हमारे लिए बेहतर है। उसमें पुलिस अंकल भी थे, उनके बारे में क्या कहेंगे आप?
1: वो पुलिस अंकल ने जॉन से मेरे पेरेंट्स थे उस फिल्म में, उन्होंने उनको बताया था कि ज्यादातर मोबाइल ना चलाएं और अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करें, जो वो मांगे उसको लाके दें और कहीं बाहर ले जाएं और कहीं भी पार्क में ले जाएं ऐसे।
0: बहुत अच्छा मैसेज है और बहुत अच्छा उन अंकल ने भी आपको समझाया, तो यही बहुत जरूरी है हमारे लिए भी, सबके लिए। बच्चों के साथ समय हमें बिताना चाहिए, क्योंकि जब हम अपने बच्चों को समय नहीं देते फिर वो मोबाइल या टीवी के साथ व्यस्त हो जाते हैं, और आजकल के टाइम में हमें अपने बच्चों को समय जरूर देना चाहिए। उनको बाहर लेके जाना चाहिए, घुमाना चाहिए, उनसे बातें करनी चाहिए, चाहे हम उनको पढ़ाने भी बिठा ले अपने साथ, हमें आजकल उनके साथ टाइम जरूर देना चाहिए। ये थी हमारी बातचीत कुर्सी रस से। आज हमारे साथ शो में उनकी मम्मी भी मौजूद है। आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम में।
2: थैंक यू सो मच आपने शो में बुलाया हमें। मेरा नाम हरप्रीत कौर है, मैं गुरसीरत की मदर हूँ।
0: आपके लिए कितना आसान या मुश्किल है गुरसीरत को कंपटीशन के लिए तैयार करना, लेके जाना, पार्टिसिपेट कराना, कैसा लगता है आपको?
2: मैम कई बार मुश्किलें आती थी, लेकिन स्टार्टिंग में आई है मुश्किलें, उसके बाद नहीं आई है। धीरे धीरे जैसे जैसे हम जाते गए, पार्टिसिपेट कराते गए, इसको प्राइज भी आता रहा, बहुत खुशी होती है, आगे आगे इजी लगता है कि हाँ जाना।
0: ये तो आपने बिल्कुल सही बात की कि शुरुआत में हम कोई भी काम करते हैं मुश्किलें तो देखो आती ही हैं, पर हम उसको लगातार निरंतर करते जाते हैं तो फिर वो आसान लगने लग जाता है, फिर वो कहते हैं ना कि सफर आसान हो जाता है। तो आपने कैसे पहचाना कि आपके बच्चे में इतना टैलेंट भरा हुआ है?
2: बचपन से ही मतलब घर में करती थी डांस वगैरह, थोड़ा थोड़ा करते करते, जैसे हम एक बार गए इसको ऑडिशन दिलाने के लिए, वहाँ पे सिलेक्ट भी हो चुकी, फिर वहाँ पे फाइनल में गई है तो वहाँ फर्स्ट प्राइज लेके आई है, तो वहाँ मिस पंजाबन का इसने टाइटल जीता।
0: आप इसको ट्रेनिंग दिलवाते होंगे डांस की?
2: हाँ जी मैम, दिलवाते हैं इसको ट्रेनिंग।
0: डेली ही जाती होंगी?
2: हाँ जी मैम, डेली जाती है
0: क्लासेस के लिए।
2: हाँ जी।
0: बहुत अच्छा है ये प्रयास, क्योंकि बिना क्लासेस के, कोचिंग के बच्चे आगे नहीं पहुंच पाते, तो आपका जो ये सपोर्ट है अपने बच्चे के लिए काबिले तारीफ है।
2: थैंक यू मैम।
0: आप दोनों का लक्ष्य क्या है गुरसीरत के लिए?
2: हम ये चाहते हैं कि ये आगे और जाए, जो इसका मुकाम है कि हाँ अपने मेन टाइटल पे पहुंच सके।
0: ये सपने देखते हैं, पर पंख तो आप ही दोनों देते हैं इनको उड़ने के लिए, है ना
2: जी।
0: तो बिना माँ बाप की सपोर्ट के बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते, और ऐसे माँ बाप हो तो बच्चे क्या कुछ नहीं कर सकते। ये हमारे लिए भी, सभी के लिए एक मैसेज है, बहुत अच्छा, हम भी इससे मोटिवेट होते हैं, और मैं चाहूंगी जो लोग सुनेंगे इस प्रोग्राम को वो भी मोटिवेट हों आपसे, आपकी बेटी गुरसीरत से, कि हम भी कर सकते हैं, या पेरेंट्स को भी ये लगेगा सुन के कि हम भी अपने बच्चों को आगे बढ़ा सकते हैं, लेके जा सकते हैं, तो बच्चे क्या कुछ नहीं कर सकते अगर माँ बाप का साथ हो तो। क्या मैसेज देना चाहते हैं पेरेंट्स को?
2: मैम सभी पेरेंट्स को यही मैसेज है कि बच्चे का टैलेंट पहचान कर उसको उसी टैलेंट पे लेके जाओ, जो भी बच्चा चाहता है कि हाँ मेरे को इस फील्ड में जाना है तो उसी फील्ड में लेके जाओ बच्चे को। टैलेंट के साथ साथ पढ़ाई भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अकेला टैलेंट ही नहीं जरूरी, पढ़ाई भी जरूरी है, इसमें दोनों साइड सपोर्ट प्रॉपर होनी चाहिए दोनों।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, पढ़ाई भी आजकल के लिए आजकल के टाइम में बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ में पढ़ाई के साथ अगर हम बैलेंस करते हैं दोनों चीजें तो सब कुछ हो सकता है।
2: हाँ जी,
0: थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच आपका हमारे शो पे आने के लिए।
2: थैंक यू मैम।
0: प्रोग्राम का समय खत्म हुआ जा रहा है। गुरसीरत आपका थैंक यू हमारे प्रोग्राम में आने के लिए, आपके पेरेंट्स का भी थैंक यू। उम्मीद करती हूँ कि अम्बाला के लोग आप पर नाज करेंगे। इसके साथ ही हम आपको छोड़ जाते हैं गुरसीरत के एक फेवरेट सॉन्ग के साथ। अब मुझे दीजिए इजाजत, लेती हूँ आपसे विदा, फिर मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
1: मुझे भी दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल जगत एपिसोड 2। आज के आमंत्रित मेहमान थे गुरसीरत कौर। प्रस्तुत किया आरजे शिवानी ने। रिकॉर्ड किया राहुल अल्यान ने। एडिट व निर्देशन भारत सोपोरी का। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो व्यवस्था की प्रस्तुति।

90.0 FM पर सामाईन की खिदमत में पेश है रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: रेडियो वितस्ता 90.0 MHz से मैं बोल रही हूँ, आपकी रेडियो दोस्त कविता अग्रवाल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक प्रेरक कहानी जिसका शीर्षक है निरंतर अभ्यास। बहुत पुरानी बात है, एक वृद्ध किसान अपने पोते के साथ खेतों में रहता था। उन खेत खलियानों के चारों ओर सुंदर पहाड़ियां थी और थोड़ी ही नीचे एक नदी बहती थी। वह किसान सुबह उठकर अपने दैनिक क्रियाओं के साथ साथ भगवत गीता का पाठ किया करता, जो उसे कंठस्थ था, और साथ में काफी मंत्रों का उच्चारण किया करता था। किसान का पोता प्रतिदिन अपने दादाजी को सुनता और वही सब करने की कोशिश करता। धीरे धीरे वह भी भगवत गीता के श्लोक बोलने लगा, परंतु उसे कुछ समझ न आता, वह केवल उन सब को बोल लेता था। एक दिन उसने अपने भोले स्वभाव में अपने दादाजी से कहा, दादाजी मैं यह सब मंत्र तो आपको सुनकर बोल लेता हूँ, परंतु मुझे कुछ भी समझ नहीं आता, तो फिर मेरा ऐसा करने का क्या लाभ है। दादाजी ने उस समय उसे एक टोकरी दी जिसमें से वो अंगीठी में कोयले डाल रहे थे। वह बोले, यह टोकरी लेकर जाओ और नीचे नदी से इसमें पानी भर लाओ। बच्चा गया और पानी ले आया, पर ये क्या, उसने देखा ऊपर आते आते सारा पानी टोकरी की दरारों में से रिस गया और टोकरी बिल्कुल खाली है। दादाजी ये देखकर हंसे और बोले, तुम्हें अपनी स्पीड बढ़ानी होगी, थोड़ा तेज चलना होगा। बच्चा फिर गया और इस बार तेजी से आया, परंतु इस बार भी टोकरी खाली थी। वह कहने लगा, टोकरी में पानी लाना संभव नहीं है, मैं बाल्टी में ले आता हूँ। तो किसान ने कहा, नहीं मुझे तो टोकरी में ही चाहिए, तुम कोशिश करो, अपनी स्पीड बढ़ाओ तो शायद यह हो पाएगा। इस बार उसने स्पीड अपनी और बढ़ाई और हाफते हाफते पानी भरकर लाया, परंतु इस बार भी टोकरी खाली थी। उसने अपने दादाजी को विश्वास दिलाने के लिए कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, आप देखना इस बार मैं कितनी तेज गति से काम करूंगा, फिर भी पानी नहीं आएगा। वह यह कहकर नदी की तरफ दौड़ा और दादाजी को दिखाते हुए टोकरी को नदी में डुबोया और बाहर निकालकर पूरी तेजी से ऊपर आने लगा, परंतु इस बार भी टोकरी खाली थी। अब दादाजी बोले, दादाजी मुस्कुराए और बोले, टोकरी की तरफ देखो। बच्चे ने जैसे ही टोकरी की तरफ देखा तो उसे टोकरी कुछ अलग दिखी। पहले वह कोयला रखने के कारण अंदर और बाहर से काली और गंदी हो गई थी, पर अब अंदर और बाहर से एकदम साफ और सुंदर लग रही थी। दादाजी ने समझाया, यही होता है भगवत गीता पढ़ने से या मंत्र उच्चारण करने से, भले ही हमें समझ न आए, पर वह हमें अंदर और बाहर से यानी हमारे तन और मन को एकदम साफ कर देती है और हमें इसका एहसास भी नहीं होता। जब ये सफाई चल रही होती है तो हमें पता भी नहीं चलता कि हम किस कदर अंदर और बाहर से शुद्ध हो जाते हैं। जैसे बिना एहसास के यह टोकरी एकदम साफ हो गई है। यह कहानी हमें सिखाती है कि ना केवल नाम जप, ना केवल मंत्र उच्चारण, अपितु कोई भी काम अगर हम नित्य रूप से करें तो उसका गहरा प्रभाव हमारे तन मन और चित्त पर अवश्य पड़ता है, और ये नियम अच्छी और बुरी बातों दोनों के लिए समान है, क्योंकि हमारा अचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड सही गलत या अच्छे बुरे में भेद नहीं करता। इसलिए यह निर्णय हमारा है कि हमें क्या सीखना है। धन्यवाद। ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 7056413010 पर अवश्य बताएं। मैं आपके लिए और इसी तरीके की कहानियां लेकर फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
1: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप जी सुन रहे हो 90.0 FM ते रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा। आपदा अपना रेडियो, आप जी दी आवाज दिल तो रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी दा।

आइए कुछ अच्छा सुनते हैं। 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो।

यो सा FM 90.0 MHz के प्रसारण रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का अपने उम्मीद से के हमारा प्रसारण आपने पसंद आ रहा होगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे गीत सुनने खातर सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का।

90.0 FM पर सामाइन की खिदमत में पेश है रेडियो वितस्ता। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

यू आर लिसनिंग 90.0 FM रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी का अ कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी।

आपने चुन किया है FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सुपोई। दोस्तों, कहते हैं कि पूरी दुनिया एक रंगमंच है और हम सब इसके कलाकार, लेकिन एक असली कलाकार वही है जो अपनी कला से समाज को आईना दिखाए और अपनी अदाकारी से लोगों के दिलों को छू ले। मगर इस रास्ते पर चलने के लिए सिर्फ जुनून काफी नहीं है, सही दिशा का होना भी बहुत जरूरी है। चाहे आप अभी अभी थिएटर की दुनिया में कदम रख रहे हों, यानी हमारे नवोदित कलाकार, या फिर आप बरसों से मंच से जुड़े हों, आप सभी के हुनर को निखारने और आपको सही मार्गदर्शन देने के लिए आज से हम ला रहे हैं अनमोल वचन, एक बेहद खास शख्सियत की आवाज में। जी हाँ, आज से हम फाइव एलिमेंट्स थिएटर ग्रुप के संचालक और रंगमंच की दुनिया के जाने माने रंगकर्मी श्री मानव मेहरा जी आपके मार्गदर्शन हेतु इस श्रृंखला में रहेंगे। ये वेद थिएटर ग्रुप और कल्चरल सोसाइटी अम्बाला की ओर से रंगमंच और रंगकर्मियों के मार्गदर्शन के लिए एक कोशिश और एक पहल। मानव मेहरा जी, आज से हमारे सभी उभरते हुए और अनुभवी कलाकारों को अभिनय की बारीकियां सिखाएंगे इस रेडियो श्रृंखला में और बताएंगे कि एक सफल मंच कलाकार बनने के लिए किन तत्वों की जरूरत होती है। कार्यक्रम रंगमंच की ओर में तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि शुरू होने जा रहा है कला और कलाकार का ये खूबसूरत सफर सिर्फ रेडियो विदस्ता FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़।

एक एक्टर को फिल्में कैसे देखनी चाहिए? अक्सर लोग फिल्में देखते हैं एंटरटेन होने के लिए, लेकिन एक एक्टर को फिल्में देखनी होती हैं सीखने के लिए। जी हाँ, इस वीडियो में या यूं कहें इस वीडियो सीरीज में हम यही सीखेंगे कि एक एक्टर फिल्म को कैसे देखे। सिर्फ कहानी नहीं, सिर्फ हीरो या विलन नहीं, बल्कि ये कि एक एक्टर ने अपने इमोशंस को कैसे अप्रोच किया, सीन में अंदर क्या चल रहा है और बाहर क्या चल रहा है। अब हम ये सीखेंगे कि डायलॉग के पीछे, इनफैक्ट डायलॉग ना बोले, इनको लाइंस बोले, कि लाइंस के पीछे कौन सा सबटेक्स्ट चल रहा है। कैमरे के सामने लाउड एक्टिंग क्यों नहीं होती है और कैसे साइलेंस भी एक्टिंग बन जाता है। तो इस सीरीज में हम फिल्में रिव्यू नहीं कर रहे हैं, हम उन्हें एक्टिंग क्लास की तरह यूज कर रहे हैं। हर वीडियो में एक फिल्म होगी और एक सवाल होगा कि इस फिल्म से एक एक्टर क्या सीख सकता है। अगर आप एक्टर हो या एक्टर बनना चाहते हो तो यह सीरीज आपके लिए है, क्योंकि जब आप फिल्में सही तरीके से देखेंगे या देखना सीख लोगे तो आप बिना स्टेज पर गए, बिना कैमरे के सामने आए, रोज एक्टिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चलिए आज की फिल्म से एक्टिंग का पहला सबक शुरू करते हैं। आज की फिल्म है सत्यजीत रे साहब की नायक। उम्मीद है आप में से बहुत सारे लोगों ने देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो जाइए देखिए, यूट्यूब पर उपलब्ध है। खैर, अगर आप एक्टर बनना चाहते हो तो एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा कि अगर कल आपका नाम, फेम, इमेज सब कुछ चला जाए तो क्या आप खुद से नजर मिला पाओगे। सत्यजीत रे की फिल्म नायक इसी सवाल का जवाब है। यह फिल्म एक मशहूर स्टार की कहानी है, नाम है अरिंदम मुखर्जी। एक ट्रेन का सफर, कोई फाइट नहीं, कोई विलन नहीं, कोई मेलोड्रामा नहीं, सिर्फ एक इंसान और उसका दिमाग। एक्टर का सबसे बड़ा दुश्मन होता है उसकी इमेज। अरिंदम सक्सेसफुल एक्टर है, कॉन्फिडेंट दिखता है, लेकिन अंदर से वो डरा हुआ है। डर इस बात का कि कहीं लोग उसका असली चेहरा ना देख ले, और ये डर हर एक्टर के अंदर होता है। जब आप इमेज बचाने लगते हो, एक्टिंग मर जाती है। बढ़िया एक्टिंग तब होती है जब बाहर और अंदर अलग अलग थॉट्स चल रहे होते हैं। नायक की एक्टिंग लाइन से नहीं चलती, वो चलती है सबटेक्स्ट से। अरिंदम जो बोलता है वो सच नहीं होता, सच होता है जो वो छुपा रहा है। लाइंस ऑडियंस के लिए होती हैं, एक्टर का काम होता है जो नहीं बोला गया उसे जीना। हर लाइन को बोलने से पहले बस इतना सोचो कि मैं यहां क्या छुपा रहा हूं, या फिर असल में क्या बताना चाह रहा हूं। इस फिल्म के ड्रीम सीन्स एक्टिंग का एडवांस लेवल है। यहां लॉजिक नहीं चलता, यहां साइकोलॉजी चलती है। गिल्ट, फियर, फेलियर का डर, सक्सेस का प्रेशर, ये सब वर्ड्स में नहीं, फीलिंग्स में आता है। उत्तम कुमार जी यहां थिएटर के लिए नहीं खेल रहे हैं, वो कैमरे के लिए एक्टिंग को छोटा कर देते हैं, यानी कि कुछ भी दिखाने की जरूरत नहीं, कैमरा अपने आप सब कुछ देख लेगा। आंखों की हल्की सी मूवमेंट, सांस का बदलना, सब कुछ देख लेगा। याद रखो, कैमरा झूठ पकड़ लेता है, इसलिए सिनेमा एक्टिंग में फील करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दिखाना नहीं। नायक एक कड़वा सच दिखाती है। सक्सेस के साथ एक्टर का आईडी भी बढ़ता है। अब ये आईडी क्या होता है मैं बता सकता हूं, लेकिन उसके लिए एक और वीडियो बनाना पड़ेगा, तो बेटर है अपने आप थोड़ी रिसर्च करो। हाँ, बहरहाल, तो मोटा माटी ये समझ लो कि उस एक्टर को कुछ फर्क नहीं पड़ता
कि सीन का रिदम क्या है, टेम्पो क्या है। मैं तो अपने हिसाब से सब कुछ करूंगा, मैं बहुत बड़ा एक्टर हूं, इंस्टा पर बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, आई एम ऑलवेज राइट। और ये आईडी सबसे पहले लिसनिंग को मार देता है। जिस दिन आप सुनना बंद कर देते हो ना, उस दिन से आप एक्टर नहीं रहते, कुछ और बन जाते हो। नायक हमें हीरो बनना नहीं सिखाती, ये फिल्म सिखाती है अपनी कमजोरी एक्सेप्ट करना। जो एक्टर अपनी कमजोरी से नहीं भागता वो ही सच्चा एक्टर होता है। अब बात करते हैं होमवर्क की। भाई अगर वीडियो देखा है तो होमवर्क भी तो कुछ करोगे ना, तभी तो सीखोगे, नहीं तो सोचो अगर आपकी लाइफ पर नायक जैसी फिल्म बने तो ट्रेन के उस सफर में आपका कौन सा डर आपके सामने आएगा, उसका जवाब लिखो। और जब ये जवाब लिख लोगे वहीं से आपकी एक्टिंग शुरू हो जाएगी। इस फिल्म को एक बार नहीं बार बार देखो, एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, ट्रेनिंग के लिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर कि कौन सा सीन आपको अनकंफर्टेबल कर रहा था, क्योंकि जो अनकंफर्टेबल करे वही एक्टर को ग्रो करता है।

0: ದೈಚು ಬಜಾನ್ 90.0 ರೇಡಿಯೋ ವಿತಸ್ತ ಹಮ್ ಸಫರ್ ಜಿಂದಗಿ ಹಂದ್.
1: आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का, आपकी जिंदगी की रवानी. ललेश्वरी, जिन्हें ललदेत या ललेश्वरी शिव योगिनी भी कहा जाता है, 14वीं शताब्दी की कश्मीरी संत कवियत्री और शैव दर्शन की प्रमुख साधिका थी. उन्होंने ललवाक नाम से जाने जाने वाले रहस्यमयी दोहों में जीवन, आत्मा और ईश्वर के गहरे सत्य व्यक्त किए. उनकी वाणी में भक्ति, दर्शन और मानवीय संवेदना का अद्भुत संगम मिलता है. ललेश्वरी ने समाज को बताया कि ईश्वर मन के भीतर है, बाहरी अडंबरों में नहीं. शिव योनि का अर्थ है शिव की सृजनात्मक ऊर्जा, अर्थात वह दिव्य स्रोत जिससे सृष्टि की उत्पत्ति होती है. कश्मीर शैव दर्शन में शिव योनि को सृजन, चेतना और शक्ति का प्रतीक माना गया है. ललेश्वरी की वाणी में शिव योनि का उल्लेख आत्मबोध और परम चेतना की अवस्था को समझाने के लिए आता है. ललवाक शब्द का अर्थ है लल यानी ललेश्वरी, के वाक यानी वचन या दोहे. ये छोटे छोटे दोहे या सूक्तियां हैं जिनमें उन्होंने साधना, आत्मज्ञान, प्रेम और सच्चे ईश्वर की अनुभूति को सरल भाषा में व्यक्त किया है. ये वाक आज भी कश्मीर की आत्मा की आवाज माने जाते हैं. हमने ललेश्वरी के ललवाक को हिंदी और कश्मीरी में तैयार कर आप तक पहुंचाने की कोशिश की है. हम मानते हैं कि ये ललवाक हमारी जीवन का रास्ता आसान कर देती है. इन ललवाक को समझाया है हिंदी और कश्मीरी में डॉक्टर राज नेहरू जी ने और आवाज दी है श्रीमती नीरजा पंडित ने. इनको तैयार किया है जाने माने फिल्म निर्देशक और निर्माता अशोक पंडित ने. तो आइए सुनते हैं ललवाक की ये श्रृंखला.
2: आज का जो ललवाक माता ललेश्वरी शिव योगिनी का मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण ललवाक है. इस ललवाक में ललेश्वरी कहती हैं, मैं पहले कश्मीरी में आपको बताऊंगा, अकुई ओंकार युस्नाय विदरे, अकुई ओंकार युस्नाय विदरे, कुंभई ब्रह्मांडस सुंगरे, अक्सुई मंथर सेतस करे, अक्सुई मंथर सेतस करे, तस्सास मंथर क्या करे. लल कहती है जिस ओंकार को किसी ने अपनी नाभि में धारण कर लिया, नाभि मतलब बड़ी महत्वपूर्ण है हमारे कश्मीर योग दर्शन में. नाभि हमारे सात कुंडलनी चक्रों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है, और जब ओंकार की वो ध्वनि और वाइब्रेशन मेरे नाभि में केंद्रित हो जाती है तो ओम ही एक ब्रिज बन जाता है मेरे सेल्फ कॉन्शियसनेस के बीच में और उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के बीच में. हमें उस यूनिवर्सैलिटी का पता लगता है कि मैं अब केवल मैं नहीं हूं, मैं तो इस प्रकृति का एक बहुत बड़ा हिस्सा हूं, इस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस का एक बहुत बड़ा हिस्सा हूं. तो जब मैं भी वही बन जाता हूं तो फिर वो कहती है ता सास मंथर क्या करे, फिर मुझे रिचुअल्स की कोई आवश्यकता नहीं, पूजा पाठ पद्धति यज्ञ इन सब की मुझे कोई आवश्यकता नहीं. परंतु ये बड़ा जरूरी है समझना कि एक नर्सरी से लेके पीएचडी वाला मॉडल है, यानी शुरुआत तो आपको कहीं से करनी पड़ेगी. और जब वो शुरुआत करते हैं और करते करते करते आप अपनी नाभि में उस ओम को धारण कर लेते हैं तो फिर आप उसी स्तर पर पहुंच जाते हैं जहां पे आपको इन छोटी मोटी पद्धतियों की आवश्यकता नहीं होती. मैं नीरजा जी से कहूंगा कि वो इस ललवाक को अपने सरस्वती के मुखमंडल से हम सब तक पहुंचे.

इस प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं रमेश मराठा। आइए महसूस हो जाए फिल्मी नखमों से, ताअबद जलते रहे गरिये इंतजार के चिराग, ताअबद जलते रहेंगे

करती थी वो बातें, मुस्कुराती थी, रिश्तों की बारीकियों को समझती थी, समझाती थी मोहब्बत की जुबान। एक अनजानी लड़की थी, पर थी वो मासूम, नादान, सहमी सहमी। उड़ते परिंदों के संग उड़ने की चाहत ली, ख्वाबों को तरतीब देना शर्त।

हरा है मौसम और तुम्हारी यादों के इंद्रधनुष में जीवन गुजरता गया। बंद आंखों के तस्वुर में ढल जाती हो, बंद आंखों के तस्वुर में ढल जाती हो, चल जाती हो और जल जाती हो। मेरे रास्तों को रोक लेती हो अपनी आहुजारी से, दुपट्टे के छांव तले सहलाती हो, संभालती हो

ये रास्ते ही प्यार की खुशबू का एहसास लिए, आओ हम चले इन्हीं राहों पे मुस्कुराहट का लिबास पहने। महकाएं अपने वजूद को और रोशन करें, भीगे मौसम को और टूटे अब्र को, क्योंकि ये रास्ते हैं

खूबसूरत एहसास हो जिसे मैं महसूस करता हूं अक्सर अपनी तन्हाइयों में। याद आते हैं गुजरे वो पल जब इन साफो शफाफ पानियों में हम अपने चेहरों के अक्स ढूंढते, देखते, परखते और पहचानते थे। बहुत देर तक इन किनारों पे शब कटती थी इंतजार में। हाँ, इंतजार में, शायद यूं ही बेवजह।

बेताबियां सुलग गई, धीरे धीरे खाक में मिल गई, बिछ गए दब गए उम्मीदों के ख्वाब जमीनों की गोद में। अब के मौसम सिर्फ जर्द रहे, साथ रहते रहते तुम क्यों बिखर गए, खफा हो गए, और मैं वक्त के साथ साथ ढल

दोस्तों, आपको हमारा आज का ये प्रोग्राम कैसा लगा जरूर बताइएगा। अब चाहेंगे आपसे इजाजत। आपने फिल्मी नगमों का ये सफर तय किया अपने रेडियो दोस्त रमेश मराठा के साथ।

हम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता। अंबाले का अपना रेडियो, सुनते रहो अपने पसंद के गाने।

0: पेश है कार्यक्रम माँ अनमोल, एपिसोड 2। पेश करेंगे आरजे सेजल और भरत सुपोरी।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो। आपका स्वागत करते हैं आज के कार्यक्रम में, जो खास तौर से डेडिकेटेड है सभी मदर्स को। माँ एक ऐसा शब्द है जिसके बिना जीवन अधूरा सा लगता है। माँ के बारे बहुत लिखा गया है, लेकिन अभी भी उनके प्यार को बयां करने के लिए शब्द कम है हमारी शब्दावली में।
2: माँ होना ही अपने आप में एक बहुत खूबसूरत एहसास है। अपने अंदर बढ़ते जीवन को महसूस करना, गर्भ में उन नन्हे हाथों पैरों की हलचल होना, फिर उन नन्हे हाथों को अपने चेहरे पर महसूस करने का एहसास अलग ही होता है।
1: उन किलकारियों को सुनने का इंतजार तो सभी को होता है, लेकिन उन किलकारियों को दुनिया में सुरक्षित लाने का एहसास सिर्फ माँ को। इसलिए माँ का एक दिन नहीं हो सकता, क्योंकि हर दिन ही माँ का है।

0: सिर्फ माँ बनने पर ही ममता का एहसास नहीं होता, कहीं ना कहीं हर औरत में पहले से ही ममता समाई होती है। चाहे वह आपकी बहन हो, दोस्त हो, पत्नी हो, जब भी आप दुख या किसी तकलीफ में हो तो अपने प्यार, ध्यान या प्यार भरे गुस्से से ममता झलका ही देती है।
1: शायद इसीलिए बहन, भाभी, दादी, नानी, बुआ और खास तौर पर मामा, इन सभी रिश्तों को माँ का दर्जा दिया गया है, लेकिन वो दर्जा भी हासिल उन्हें निभाने से ही होता है।
0: कहते हैं माँ की एक दुआ हजार दुआओं के बराबर होती है, और दिन में ना जाने वो कितनी ही दुआएं हमारे लिए करती है, और आखिरकार भगवान भी उन दुआओं को टाल नहीं पाता, और इसीलिए शायद जब तक माँ का आंचल होता है हर दिन जन्नत सा लगता है।

0: में या हमारी जिंदगी में वो शख्स है जिससे जितना भी नाराज हो या लड़ लो वो कभी भी खफा नहीं होती। लेकिन हाँ, जब वो नाराज या गुस्सा हो तो उसे मनाना तो मुश्किल होता ही है, लेकिन वो दिन, वो घर और ये दुनिया उसके बिना अधूरी सी लगती है।
1: बिन कहे वो सब समझ जाती है, बिना छुए हमारा दर्द महसूस कर लेती है। जो चीज हमारी आँखों के सामने होते हुए भी नहीं मिलती, उससे पलक झपकते ही ढूंढ लेती है। माँ जादूगर होती है, हर गम चुटकी बजाकर गायब कर देती है। जब कुछ खाने का मन ना हो तो अपने हाथों के स्वाद से पेट भर देती है।
0: कुछ भी कहो, माँ होती तो कमाल है। इसीलिए भगवान भी धरती पर आते हैं, तेरा प्यार पाने को, बच्चा बन तेरी गोद में सो जाने को, तेरे हाथ का खाना खाने को, नटखट शैतानियां कर तुझे हंसाने को, डर के तेरे आंचल में छुप जाने को, शरारत कर तुझसे डांट खाने को, निस्वार्थ प्रेम की शिक्षा तुझसे पाने को।

0: आज का ये फलसफा था माँ के नाम, और ये जिंदगी तो है और थी उसी के नाम। अब इस फलसफे का अंत करते हैं एक छोटी सी कविता के साथ जो माँ के नाम है।
1: जब भी दुख के साए ने घेरा, माँ के आंचल ने मुझे समेटा। जब भी पकड़ी गलत राह, तो खींच मुझे सही राह पर भेजा। जब गलत सही का बोध नहीं था, तब सही का भाव तूने समझाया। जब पल्लू तेरा छोड़ बाहर निकला, तो तेरा दिया ज्ञान समझ में आया। जब देखी पत्थर सी दुनिया, तब तेरे आंचल में समाया संसार समझ में आया। जब लोगों ने जोड़े मतलब से नाते, तब तेरी डांट के पीछे का प्यार नजर आया। जब छोड़ा तूने इस संसार में अकेला, तब माँ तेरे नाम का मतलब समझ में आया।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम माँ अनमोल एपिसोड 2, पेश किया आरजे सेजल और भारत सोपोरी ने, रिकॉर्ड एडिट व कविता मौलिक आरजे सेजल, निर्देशन भारत सोपोरी। ये थी FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता की पेशकश।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

0: पेश है कार्यक्रम वितस्ता गीतमाला एपिसोड 6। कार्यक्रम आधारित है पूर्व न्यायाधीश श्रीमती मीना भट्ट सिद्धार्थ के काव्य संग्रहों पर। पेश करेंगे भारत सोपुरी।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी, लेके आया हूं वितस्ता गीतमाला का एक नया एपिसोड। वितस्ता गीतमाला पूरे विश्व में सुना जाता है। हमारे पास जबलपुर मध्य प्रदेश से पूर्व न्यायाधीश श्रीमती मीना भट्ट सिद्धार्थ जी ने अपने कविता संग्रह FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता को भेजे हैं। इन कविता संग्रहों का अध्ययन करने के बाद हमने निर्णय किया कि वितस्ता गीतमाला के माध्यम से उनकी लिखी कविताओं को आप तक पहुंचा सकें। मीना भट्ट सिद्धार्थ 2013 में सेवानिवृत्त होने के बाद कुछ साल लोक आयुक्त भी रही हैं। एक कवित्री के नाते जाने माने कवियों ने अपना प्यार और आशीर्वाद से समय समय पर इन्हें नवाजा है, जैसे बीकानेर से श्री रवि शुक्ल जी, सीहोर मध्य प्रदेश से श्री धर्मराज देशराज जी, सीडी मध्य प्रदेश से श्री नजर द्विवेदी जी, मुंबई से श्री हीरालाल यादव व अन्य। आज जो कविताएं गजलें आपको हम सुनाएंगे वो श्रीमती मीना भट्ट सिद्धार्थ जी के प्रकाशित काव्य संग्रहों एहसास के मोती व ख्याले मीना पर आधारित है। और आज का ये एपिसोड समर्पित है श्रीमती मीना भट्ट सिद्धार्थ के दिवंगत पुत्र सिद्धार्थ को, जिनका निधन 3 अप्रैल 2022 को हुआ था। पहले कुछ दोहे आपको सुनाते हैं जिनके माध्यम से हम उनके सुपुत्र सिद्धार्थ जी को याद करेंगे। मीना जी लिखती हैं, जन्म मरण का खेल ये समझ न पाई पार्थ, गीत गजल था छंद भी सब कुछ था सिद्धार्थ, बसे क्षितिज के पार तुम भूल गए सिद्धार्थ, अब जीवन ये बोझ है क्या साउथ क्या नॉर्थ, चली तेज पुछवा हवा रूप बड़ा विकराल, जलता दीपक बुझ गया खोया घर का लाल, पीर समझ पाया नहीं बैरी था संसार, मित्र अकेले मातू थी करे स्वप्न साकार, सूखे सूखे हैं अधर अखियों में है नीर, ममता बड़ी अधीर है उर है अथा पीर, कबीरा साखी मौन है चुप मीरा की श्याम, रूठे सीता राम भी जप लूं कैसे नाम, चर्चा करती रात दिन मिटे नहीं संताप, खंडित है विश्वास सब करते नित विलाप, मोह त्याग कर चल दिया भूला मातू दुलार, पल पल लड़ता मौत से लिए अश्व की धार, आतिशय अंतस पीर है मनवा रहे उदास, राजा बेटा लाडला करे हृदय में वास, बस यादें ही शेष है मीना अब सिद्धार्थ, सुनी गोद पुकारती करो काज परमार्थ, सुनी गोद पुकारती करो काज परमार्थ। ये शब्द है मीना भट्ट सिद्धार्थ जी के अपने पुत्र के लिए।

मीना भट्ट सिद्धार्थ जी लिखती हैं, जिंदगी भर के मेरे असबाब पत्थर हो गए, आपके जाते ही सारे ख्वाब पत्थर हो गए, देखकर तूफान सब गिरदाब पत्थर हो गए, आंसुओं के भी मेरे सैलाब पत्थर हो गए, बादे शब की सांस भी नाजो अदा से थम गई, मात खाए चांद तारे बाब पत्थर हो गए। अब मयसर है कहां हमको वफा संसार में, रिश्ते नाते और सब अहबाब पत्थर हो गए, अब तलक दुनिया में जिनकी कोई कीमत ही न थी, जब तराशा है उन्हें नायाब पत्थर हो गए, इल्तिजा है दे खुशी इस सरजमी को ऐ खुदा, नर्म नाजुक फूल क्या अब दाब पत्थर हो गए, मुफलिसों को पूछता कोई नहीं संसार में, जुल्म भी इतने हुए आसाब पत्थर हो गए, कब मिले इनको रिहाई इस कफस से अब खुदा, कैद में मीना हसी सुरखाब पत्थर हो गए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वितस्ता गीतमाला एपिसोड 6, और आज हम आपको जो गीत गजल सुना रहे हैं वो आधारित है पूर्व न्यायाधीश व कवयित्री श्रीमती मीना भट्ट सिद्धार्थ के काव्य संग्रहों ख्याल मीना व एहसास के मोती से। चल की नफरत को तेरी हम भी मोहब्बत कर दें, नैन से नैन मिला कुछ तो शरारत कर दें, अपने वालिद की भी कर लें वो जरा सी इज्जत, नस्ले नो को चलो हम अब ये नसीहत कर दें। मुफ्त में बैठ के तोड़े हैं जो रोटी घर पे, जर कमाने की कोई उनमें भी आदत कर दें, पाठ हमने पढ़ा सत्य अहिंसा का वो, नफरतें सारी मिटा खुद को तथा गत कर दें, इश्क के जुर्म में मुझको न चढ़ा दे फांसी, आप नाराज सही मेरी वकालत कर दें। कुछ करें ऐसा कि गैरत रहे नेताओं में, जिस्त में उनके शराफत की जरूरत कर दें, भ्रष्ट करते न कोई काम बिना पैसे के, क्यों न जायज ही जमाने में ये रिश्वत कर दें, आरजू है नहीं दौलत की मुझे अब मीना, आप अपनी ये गजल मुझको वसीयत कर दें।

0: चल।
1: अब कुछ गजलें आपको सुनाते हैं दूसरे कवि संग्रह एहसास के मोती से। मीना जी लिखते हैं, वक्त के साथ चली चलती चली मीलों तक, साथ मेरे चली ख्वाबों की कली मीलों तक। आपकी याद में कुछ हाल हमारा यूं था, अश्क बहते रहे दिन रात जली मीलों तक। तेरे दीदार की हसरत थी सदा सीने में, देखते हम थे मोहब्बत की गली मीलों तक। काश मिल जाता हमें कोई जहां में अपना, दिल में हसरत यही अब देख पली मीलों तक। तन्हा था मैं न सफर में थी तेरी यादें भी, तेरी यादें तो थी मिस्री की डली मीलों तक। खत्म होती है कहां रात गमों की साहिब, चांद की रोशनी भी हमको छली मीलों तक। हमने तन्हा ही गुजारा है सफर ये मीना, हर कदम तेरी कमी हमको खली मीलों तक। बहुत खूब, वाह।

श्रीमती मीना भट्ट सिद्धार्थ जी लिखती हैं, मेरी उल्फत के सहारे मुझे वापस दे दो, वो मेरे चांद सितारे मुझे वापस दे दो। चूम कर माथे को देते थे जो अक्सर तोहफे, चांद से माँ के दुलारे मुझे वापस दे दो। हर घड़ी देते थे बचपन में जो ढेरों खुशियां, वो ही जादू के पिटारे मुझे वापस दे दो। देख लो चाक गिरेबान हुआ है मेरा, गुजरे दिलकश वो नजारे मुझे वापस दे दो। जिनको बरसात के पानी में चलाते थे कभी, फिर वो खुशियों के शिकारे मुझे वापस दे दो। अहमियत जिनकी जुदाई में समझ आई है, अपनी आंखों के इशारे मुझे वापस दे दो। खत मोहब्बत में लिखे थे जो तुम्हें मीना ने, आज बेखौफ हो वो सारे मुझे वापस दे दो। आज बेखौफ हो सारे मुझे वापस दे दो।

आज के इस कार्यक्रम का वक्त अब समाप्त हुआ जा रहा है। एक आखिरी गजल मीना जी के कलम से, वो लिखती हैं, लिखी थी इश्क की जो दास्तां कागज पर, वो आज पढ़ रहा सारा जहां कागज पर। सियासी लोग फिजाओं में गोल के नफरत, चला रहे हैं सब अपनी दुकान कागज पर। करे तो कैसे करें फैसला भला मुनसिफ, रकम है सारी ही झूठे बयां कागज पर। अमीर अब तो हड़पते हैं हक गरीबों का, गरीब ढूंढ रहे हैं मकान कागज पर। जफा के दौर में उम्मीद भी है बेमानी, बचे हैं हरफे वफा के निशान कागज पर। जमीन पे तो हकीकत में कुछ नहीं दिखता, मची है चारों तरफ खींचतान कागज पर। न थी सितारों की कुछ आरजो मुझे मीना, उतार लाए मगर आसमां कागज पर। अब आपसे समय है इजाजत लेने का और आपको छोड़े जा रहा हूं एक मनमोहक गीत के साथ। उम्मीद है आपको आज का ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। एक बार फिर धन्यवाद श्रीमती मीना भट्ट सिद्धार्थ जी का, जिन्होंने ये काव्य संग्रह हमें यहाँ भेजे। हमारी ओर से ये एक छोटी सी भेंट मीना जी। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा आप जरूर हमें बताएं। हमारे व्हाट्सएप नंबर 7056413010 पर, नंबर एक बार फिर 7056413010। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी। मिलता हूं किसी और कार्यक्रम में, तब तक आप खुश रहें, खुशहाल रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम वितस्ता गीतमाला एपिसोड 6। आज का कार्यक्रम आधारित था पूर्व न्यायाधीश श्रीमती मीना भट्ट सिद्धार्थ के काव्य संग्रह पर। रिकॉर्ड किया राहुल अलियान ने, एडिट निर्देशन व प्रस्तुतकर्ता भरत सोपोरी। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की पेशकश।
1: योसा FM 90.0 MHz के प्रसारण रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। हमने उम्मीद से के हमारा प्रसारण आपने पसंद आ रहा होगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे गीत सुनने खातर सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता।

नमस्कार, मैं हूं रमेश मराठा। पिछले एक साल से आप रेडियो विदस्ता के प्रसारण 90.0 MHz पर अम्बाला इंडिया से सुन रहे हैं। भाइयों और बहनों, रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी का। भारत सोपोरी की जेर निगरानी में रेडियो विदस्ता से प्रसारित हो रहे हर एक कार्यक्रम काबिल तारीफ है। रेडियो विदस्ता की आवाज घर घर की आवाज। रेडियो विदस्ता की पूरी टीम को शुभकामनाएं आने वाले समय के लिए। शुभ

यू आर लिसनिंग 90.0 FM रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी का अ कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

बातों ही बातों में होना है जो हो जाता है, आंखों ही आंखों में

0: यो एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज के प्रसारण रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का। हमने उम्मीद से के हमारा प्रसारण आपने पसंद आ रहा होगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे गीत सुनने खातर सुनते रहिए एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का।
1: ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।
2: सुनते रहिए 90.0 एफएम रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का।

90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। सुनते रहिए दिल से।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

हम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता। अंबाले का अपना रेडियो, सुनते रहो अपने पसंद के गाने।

0: थम सुन रहे हैं 90.0 मेगा आर्ट्स रेडियो वितस्ता अंबाले का अपना रेडियो सुन दे रहो अपने पसंद के गाने।
1: You are listening 90.0 FM, Radio Vitasta, हम सफर जिंदगी का।

तुसी सुन रहे हो अंबाला दा अपना रेडियो रेडियो वित्तस्ता 90.0 मेगा हर्ट्ज़ ते सुनते रहो अपने पस...

0: सुनिए कविता कृष्णमूर्ति और सह कलाकारों की आवाज में दिल को छूने वाले गीत हमारे FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। उनकी आवाज और संगीत आपको ले जाएंगे पुराने सुनहरे दिनों की यादों में और साथ ही आनंद लीजिए इस संगीत के सफर का।
1: हमको मैरी नहीं मांगता, हमको लेली नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम बैंड्रा नहीं मांगता।
2: तो कौन मांगता?
1: ए जूली जूली,

0: तो कौन मांगता।
1: जॉनी जॉनी जॉनी का दिल तुम पे आया जॉनी, तुझको ही माना मैंने अपना हानी, तू ही तो मेरी जान है जान है जान है।

0: हमको लेली नहीं मांगता, हमको मैरी नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम पैंड्रा नहीं मांगता,
1: तो कौन मांगता?
2: ए जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया चोली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली।

0: हमको लेले नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम बैंड्रा नहीं मांगता,
1: तो कौन मांगता?
0: ए जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया जूली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहें अपने पसंदीदा गीत।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

सुनिए और सुनाइए, रेडियो विविधता सुनना भूलना चाहिए। आपका रेडियो, आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज दिल से।

0: ዶይቼ ቦዛን ነመት አሻሪያ ሲፈር ሬዲዮ ቪተስታ ሐምሰፈር ዘንደጊሁንድ
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता अंबाला का अपना रेडियो सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत
2: दोचु बोजान FM 90.0 रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी हुन بوزان روزیو پنن پسندید بغت.

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ ढाई दिन न जवानी नल चल दी।
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज पर अम्बाला कैंट से हमारी प्रसारण।

यू आर एंजॉयिंग 90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, एक कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

0: आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। आप सभी श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन है आज के हमारे कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी, और आज इस कार्यक्रम में मेरा साथ देंगे,
1: मेरा भी प्यार भरा नमस्कार रेडियो विदस्ता के सभी प्यारे श्रोताओं को। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अनु,
0: और हम दोनों आज एक बार फिर हाजिर हैं आपके सबसे पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। करता हूं शुरुआत कुछ पंक्तियों के साथ। धड़कनों में बसी हो जो बात, वो हम गीतों में पिरो देंगे। धड़कनों में बसी हो जो बात, वो हम गीतों में पिरो देंगे। आपकी हर ख्वाहिश को आज शुरू में हम डाल देंगे। जो लफ्जों में न कह पाए आप, वो दुनों में हम बयां कर देंगे। जो लफ्जों में न कह पाए आप, वो दोनों में हम बयां कर देंगे।
1: जी हाँ भारत जी और श्रोताओं, आज फिर हम लेकर आए हैं वो कार्यक्रम जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार रहता है, आपकी फरमाइश। लेकिन श्रोताओं, ये सिर्फ एक गाना बजाने का प्रोग्राम नहीं है। यहाँ हम सिर्फ आपका गाना नहीं बजाते, बल्कि हर फरमाइश के पीछे छुपी आपकी भावनाओं को समझते हैं और महसूस करते हैं।
0: बिल्कुल अनु, जब आप हमें कोई फरमाइश भेजते हैं तो वो सिर्फ एक नाम और एक गाने का अनुरोध नहीं होता, उसके पीछे होती है कोई याद, कोई मुस्कुराहट, कोई अधूरी बात, कोई ख्वाहिश। ये आपके पैगाम है जो हम तक पहुंचते हैं, और हम उन्हें बड़े प्यार से और अपनेपन से शुरू में जीवंत कर देते हैं।
1: और यही तो खासियत है इस कार्यक्रम की श्रोताओं, ये एक जरिया है आपके दिल की बात हम तक पहुंचाने का, अपनों तक पहुंचाने का। हम दिलों को दिलों से जोड़ने का काम करते हैं, एक शहर से दूसरे शहर, एक घर से दूसरे घर, और एक दिल से दूसरे दिल तक। हर फरमाइश एक पुल की तरह है जो दूरियों को मिटा देती है।
0: दोस्तों, वितस्ता का बहाव कभी थमता नहीं, वो हर किनारे को छूकर आगे बढ़ती है। ठीक वैसे ही ये प्रोग्राम भी हर दिल तक पहुंचता रहेगा, बिना रुके, बिना थके, आपके पैगाम के साथ, आपकी भावनाओं के साथ और आपके अपनेपन के साथ।
1: तो देर किस बात की, आपने जो फरमाइशें भेजी हैं, जो अपने दिल की बात हम तक पहुंचाई है, करते हैं शुरुआत कार्यक्रम आपकी फरमाइश की। लेती हूँ पहली फरमाइश, और जो गीत सुनाने जा रही हूँ उसकी फरमाइश कई श्रोताओं की ओर से आई है। पहले इस गीत की फरमाइश आई है पिंड तेजा मोड़ी अम्बाला से। भेजने वाले श्रोता हैं बंशीलाल संधु, कबीर सिंह संधु, जजबीर सिंह संधु, वरनीत कौर, पवनीत कौर और सारा संधु परिवार। और इसी गीत की फरमाइश आई है कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला से। भेजने वाले श्रोता हैं रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकिरत राहुल और गुरशब्द सिंह राहुल। ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म फांसी से गीत। गीत के बोल हैं जब आती होगी याद मेरी। इस गीत को अपनी आवाज दी है मोहम्मद रफी और सुलक्षणा पंडित ने। आइए सुनते हैं इन सभी का ये फरमाइशी गीत।

श्रोताओं लेते हैं अगली फरमाइश जो हमारे पास आई है कुमार हीडा सहारनपुर उत्तर प्रदेश से। भेजने वाले श्रोता है सईद मसरूर, ये सुनना चाहते हैं फिल्म छोटी सी मुलाकात से गीत। गीत के बोल है तुझे देखा तुझे चाहा तुझे पूजा मैंने। इस गीत को आवाज दी है मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर ने। और सईद मसरूर के साथ सुनने वाले अन्य श्रोता हैं शाइना हसन, अक्सा, अदीब, नाजिया, आफिया, इब्राहिम और सद्दा। आइए प्रस्तुत है इन सभी का ये मनपसंद।

इसी के साथ लेती हूँ अगली फरमाइश, जो आई है बुलडाना इस्लामपुर महाराष्ट्र से। भेजने वाले श्रोता है सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर, सुमेद कुमार दामोदर, साधना पवन पाटिल, अमोल मानकर, शोभाताई मानकर, श्लोक दीपाली। ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म किशन कन्हैया से गीत। गीत के बोल है कृष्णा कृष्णा आई कृष्णा। इस गीत को अपनी मधुर आवाज दी है लता मंगेशकर, नितिन मुकेश, चंद माथुर ने। आइए सुनते हैं इन सभी का ये फरमाइशी गीत।

आप सभी श्रोताओं की नजर एक और फरमाइश जो हमारे पास एक टेलीफोन कॉल से आई है, वशिष्ठ नगर अम्बाला कैंट से, और भेजने वाले श्रोता है विजय कुमार। ये सुनना चाहते हैं फिल्म पुष्पांजलि से गीत। गीत के बोल है, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। इस गीत को आवाज दी है मुकेश ने। आइए सुनते हैं विजय कुमार जी का ये पसंदीदा नगमा।

और इसी के साथ लेती हूँ अगली फरमाइश, जो आई है गांव जुगुड़ी जिला यमुनानगर से। भेजने वाले श्रोता हैं रणधीर भांगड़, गुरमेजो, गौरव, परवीन, युगम, वीरेन, मनकीरत और मनराज। ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म हीना से गीत। गीत के बोल है आजा वे माही तेरा रास्ता उड़ीक दिया। इस गीत को अपनी आवाज दी है लता मंगेशकर जी और सुरेश वाडकर ने। आइए सुनते हैं इन सभी का ये फरमाइशी गीत।

आप सभी श्रोताओं की नजर एक और फरमाइश जो हमारे पास आई है नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से। भेजने वाले श्रोता है पीएस नाहवकर। ये सुनना चाहते हैं फिल्म राम और श्याम से गीत। गीत के बोल है बालम तेरी प्यार की ठंडी आग में जलते जलते। इस गीत को आवाज दी है मोहम्मद रफी साहब और आशा भोसले ने। पीएस नाहवकर के साथ सुनने वाले अन्य श्रोता है निर्मला नाहवकर, विशाल नाहवकर और साथ ही मलकापुर महाराष्ट्र से नारायण इंगले, सोपान ताइडे, आशीष मुरहेकर। प्रस्तुत है इन सभी का ये पसंदीदा फरमाइशी गीत।

इसी के साथ एक और फरमाइश जो आई है चंद्रूप नगर बब्याल अंबाला कैंट से, भेजने वाले श्रोता हैं मदन गोपाल सैनी। ये सुनना चाहते हैं फिल्म दूर की आवाज से गीत। गीत के बोल हैं हुस्न से चांद भी शर्माया है। इस गीत को अपनी आवाज दी है मोहम्मद रफी साहब ने। आइए सुनते हैं इनका ये पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी का आपके जीवन का प्रवाह जारी है। प्रोग्राम आपकी फरमाइश जो आप हर शुक्रवार को दिन के 2 बजे सुनते हैं और इसका पुनः प्रसारण हर बुधवार को दिन के 2 बजे आप सुनते हैं। अगर आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं और आप किसी पुरानी हिंदी फिल्म का गीत, हरियाणवी या पंजाबी गीत की फरमाइश करना चाहते हैं, आप अपनी फरमाइश हमारे स्टूडियो के नंबर पर भेजिए अपने नाम के साथ, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के नाम के साथ जो उस गीत को सुनना चाहते हैं। हमें आपकी फरमाइशों का इंतजार रहेगा। आप अपनी फरमाइश हमारे स्टूडियो के नंबर 7056413010 पर भेजिए। नंबर आपको एक बार फिर बताते हैं, 7056413010। इसके साथ ही लेता हूं अगली फरमाइश जो हमारे पास आई है दयालबाग अम्बाला कैंट से। भेजने वाले श्रोता हैं हनी और अनिल। ये सुनना चाहते हैं फिल्म 10 नंबरी का गीत। गीत के बोल है दिल रुबा दिल्ली वाली। इस गीत को आवाज दी है आशा भोसले, मना डे और मुकेश ने। आइए सुनते हैं इनका ये पसंदीदा मनमोहक गीत।

0: आ रहे हैं आशिकों के सरदार।
1: तौबा तौबा, ये आज मेरी चश्मे आवारा क्या देख रही है नजारा, कि मेरा रखीब तेरे करीब अरे फूटे नसीब।
2: आपकी तारीफ
3: एक आशिक गरीब

0: इसी के साथ अगली फरमाइश जो आई है नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से, भेजने वाले श्रोता हैं महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मीन देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी। ये श्रोता जो गीत सुनना चाहते थे वो गीत हमारी लाइब्रेरी में उपलब्ध नहीं है, तो अब हम इन्हें हमारी पसंद का एक गीत सुनाना चाहते हैं, जो है फिल्म जौहर इन कश्मीर से। गीत के बोल हैं जन्नत की है ये तस्वीर। इस गीत को आवाज दी है मोहम्मद रफी साहब ने। आइए सुनते हैं ये फरमाइशी गीत।
1: जी हाँ महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी जी, आपसे अनुरोध है कि जब अगली बार आप अपनी फरमाइश भेजें, किसी पुरानी हिंदी फिल्म के गीत की फरमाइश ही हमें भेजें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपने लिखा है माई रेडियो माई लाइफ, बहुत अच्छी बात है, हमें ये पढ़ के बहुत खुशी हुई। और हम चाहते हैं कि रेडियो की तरंगों से हमारी जिंदगी में जो बदलाव आज तक आते रहे हैं वो आते रहे। रेडियो विदस्ता हमेशा ये कोशिश करता रहेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे पास फरमाइश भेजने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप फरमाइशें भेजते रहेंगे।
2: जन्नत की

0: तो श्रोताओं, लेते हैं आज के इस कार्यक्रम की आखिरी फरमाइश, जो एक डेडिकेशन है माँ की ओर से एक बिटिया को। कल यानी 26 सितंबर को हनविका का दूसरा जन्म दिवस है और इस उपलक्ष्य में उसकी मम्मी चारू और पापा सुमित एक गाना डेडिकेट करना चाहते हैं इस गुड़िया को। गीत के बोल है, मासूम सी गुड़िया मेरी, और एक संदेश माँ की ओर से इस बिटिया के लिए है, तुम मेरी जिंदगी की वो छोटी सी खुशी हो जिसने मेरी दुनिया को पूरा कर दिया। मेरी नन्ही सी परी को बर्थडे की ढेर सारी शुभकामनाएं। मामा तुमसे बहुत प्यार करती है। हैप्पी बर्थडे हनविका। हनविका, टीम रेडियो वितस्ता के सभी सदस्यों की ओर से आपको जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं कि जब आप बड़ी होंगी आप भी रेडियो वितस्ता को ऐसे ही सुनते रहेंगे जैसे आपके मम्मी पापा सुनते हैं। आइए, प्रस्तुत है ये डेडिकेशन सॉन्ग हनविका के लिए, और इसी के साथ हम आपसे लेते हैं इजाजत। मिलते हैं अगले कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, और उम्मीद करते हैं कि आप अपना फीडबैक भी हमें भेजेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
1: अब मुझे भी दीजिए आज्ञा। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

0: Amore mio, dove sai tu? ए, क्या गा रही है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: आ, आ, आ, ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।
1: गा के? अच्छा।

0: आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह जो करता है प्रसारण अंबाला छावनी से। और आज का सफर थोड़ा अलग है। आज हम शहर से बाहर नहीं बल्कि अपने ही शहर की गलियों में, अपने ही अतीत में झांकने वाले हैं। मैं हूं आपका रेडियो हमसफर भरत सोपोरी। मेरा दिल की गहराइयों से सभी अंबाला वासियों को और श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार।
1: मेरा भी प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अनु। इस सफर में आपके साथ रहूंगी।
0: अंबाला सिर्फ एक कैंट टाउन नहीं, सिर्फ एक जंक्शन नहीं, बल्कि एक ऐसी धरती है जिसने आजादी की पहली चिंगारी देखी, जिसने सैकड़ों साल पुराने तालाबों से शहर की प्यास बुझाई और जिसकी गलियों की खुशबू आज भी पूरे उत्तर भारत को बुलाती है। तो चलिए शुरू करते हैं अंबाला की कहानी अंबाला के शब्दों में। बात करते हैं नाम और नींव, अंबाला कहां से आया। सबसे पहले बात उस सवाल की जो हर अंबाला वासी से कभी न कभी पूछा गया हो, अंबाला नाम आया कहां से। इतिहासकार बताते हैं कि इस शहर को 14वीं सदी में अम्बा राजपूत नाम के एक सरदार ने बसाया था और माना जाता है कि शहर का नाम उन्हीं के नाम पर पड़ा। एक दूसरी मान्यता ये भी है कि ये नाम देवी भवानी अम्बा के नाम से जुड़ा है, जिनका एक प्राचीन मंदिर आज भी इस शहर में मौजूद है। और एक तीसरी दिलचस्प कहानी ये भी कही जाती है कि इस इलाके में कभी आमू के बाग हुआ करते थे।
1: अब ये पूरे यकीन से नहीं कहा जा सकता कि इनमें से कौन सी कहानी 100% सही है। इतिहास में अक्सर कई किंवदंतियां साथ साथ चलती हैं, लेकिन इतना जरूर तय है कि ये धरती बहुत पुरानी है। यहाँ हुई खुदाइयों और मिले पाषाण उपकरणों से इतिहासकार यह मानते हैं कि ये क्षेत्र हड़प्पा सभ्यता के दौर में ही बसा हुआ था और महाभारत काल से भी इसका नाता जोड़ा जाता है। तो दोस्तों, अंबाला की मिट्टी में सदियों की परतें दबी हैं और अब बात करते हैं उस अध्याय की जिस पर हर अंबालावासी को गर्व।

0: 1857, वो सुबह जो मेरठ से पहले अंबाला में उगी। दोस्तों, स्कूल की किताबों में हमने पढ़ा है कि 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम अंबाला से शुरू हुआ। इसके शोध में जाने माने इतिहासकार डॉक्टर के सी यादव जैसे शोधकर्ता शामिल है। ये दावा करते हैं कि इस विद्रोह की असली शुरुआत अंबाला छावनी से हुई थी, मेरठ से भी कुछ घंटे पहले। तारीख थी 10 मई 1857, दिन रविवार। कहा जाता है कि सुबह करीब 9 बजे अंबाला में तैनात 60वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने खुलेआम बगावत का बिगुल बजा दिया और उसके कुछ घंटों बाद दोपहर में 5वीं नेटिव इन्फेंट्री भी उनके साथ आ खड़ी हुई। ये मेरठ की घटना से करीब 9 घंटे पहले की बात मानी जाती है। हालांकि अंग्रेज फौज सतर्क थी, इसलिए इस विद्रोह को उसी वक्त कुचल दिया गया। बाद में अप्रैल 1858 से मई 1858 के बीच अंबाला में 26 से ज्यादा सिपाहियों और सैनिकों को फांसी दी गई।
1: ये बताना जरूरी है कि 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ, ये विषय इतिहासकारों के बीच आज भी चर्चा और शोध का विषय है। और हरियाणा सरकार व कई स्थानीय इतिहासकार अंबाला के इस दावे को मजबूती से आगे रखते हैं। इसी को यादगार बनाने के लिए अंबाला छावनी में जीटी रोड के पास रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर शहीद स्मारक बनाया जा रहा है। 22 एकड़ में फैला यह स्मारक, जिसमें 1.63 मीटर ऊंचा कमल के आकार का टावर है और इसके संग्रहालय में 22 गैलरियों के जरिए 1857 की पूरी कहानी, अंबाला में विद्रोह की शुरुआत से लेकर हरियाणा भर में इसके फैलाव और देश भर के शहीदों तक दिखाई जाएगी।
0: तो दोस्तों, जब भी आप उस शहीद स्मारक के पास से गुजरें, याद रखिएगा, ये सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं बल्कि उन गुमनाम सिपाहियों की कुर्बानी की गवाही है, जिन्हें इतिहास ने अब तक वो जगह नहीं दी जो मिलनी चाहिए थी।
2: 57 की चिंगारी से आज की उड़ान अंबाला तो लिखता रहे।
0: अब बात करते हैं अंबाला छावनी जंक्शन की, पटरियों पर बसा इतिहास। अब बात करते हैं अंबाला की उस पहचान की, जिससे होकर हर दिन हजारों यात्री गुजरते हैं, अंबाला छावनी रेलवे जंक्शन। इस स्टेशन का इतिहास 1891 से जुड़ा है, जब ये अस्तित्व में आया, और तभी से ये उत्तर भारत के सबसे व्यस्त और सबसे पुराने जंक्शनों में गिना जाता रहा है। आज ये हरियाणा का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है और दिल्ली कालका लाइन, मुरादाबाद अंबाला लाइन, अंबाला अटारी लाइन जैसे कई महत्वपूर्ण रेल लाइनों का संगम बिंदु है। 7 प्लेटफॉर्म और 10 पटरियों वाला ये जंक्शन देश के व्यस्ततम स्टेशनों में शुमार किया जाता है।
1: यहाँ एक बात साफ कर देना जरूरी समझती हूँ, अंबाला के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि यह भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है, लेकिन तथ्यों की बात करें तो भारत का सबसे पहला रेलवे स्टेशन 1853 में मुंबई के बोरी बंदर से शुरू हुआ था। अंबाला छावनी जंक्शन जरूर उत्तर भारत के सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण स्टेशनों में से एक है और 19वीं सदी के अंत से ही ये इस क्षेत्र का प्रमुख यातायात केंद्र रहा है। लेकिन जब हम इतिहास बता रहे हों तो सही तथ्य बताना ही हमारा फर्ज है, इसलिए हम कहेंगे अंबाला जंक्शन भारत के सबसे पुराने और सबसे व्यस्त रेलवे केंद्रों में से एक है, ना कि सबसे पुराना।

0: अब हम बात करते हैं मंदिर, तालाब और मील के पत्थर की विरासत, जो आज भी जीवित है। अम्बाला की विरासत सिर्फ किताबों में ही नहीं, बल्कि आज भी शहर की गलियों में सांस लेती है। चलिए इनमें से कुछ जगहों की आप सभी को सैर कराते हैं। सबसे पहले रानी का तालाब। अम्बाला छावनी में स्थित यह लगभग 400 साल पुराना तालाब कहा जाता है, जिसको महाराजा रंजीत सिंह के दौर में बनवाया गया था। कहा जाता है कि उस दौर में दो तालाब खुदवाए गए थे, राजा का तालाब और रानी का तालाब। समय के साथ साथ राजा का तालाब अब पटेल पार्क में बदल चुका है, लेकिन रानी का तालाब आज भी अपने मूल रूप में मौजूद है, जिसके पास शिव मंदिर और देवी मंदिर है और जिसकी देखभाल आज भारतीय सेना करती है। पास ही ठाकुर द्वारा मंदिर भी है, जो सिख गुरु गुरबख्श सिंह की स्मृति में बनवाया गया बताया जाता है। और भगवान वामन का एक मंदिर भी है, जहां दशहरे पर सालाना मेला लगता है। इसके अलावा शहर में भवानी अम्बा माता का मंदिर और अंबिका देवी मंदिर जैसे प्राचीन मंदिर भी है, जो शहर की धार्मिक विरासत की कहानी कहते हैं।
1: अब बात कोस मीनार की। ये मुगल कालीन मील के पत्थर जैसी मीनारें जीटी रोड के किनारे किनारे यात्रियों को दूरी बताने के लिए बनवाई गई थी, और ये परंपरा शेर शाह सूरी के दौर से जुड़ी मानी जाती है। अम्बाला में मौजूद यह कोस मीनार आज भी प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम के तहत एक संरक्षित स्मारक है। हालांकि वक्त की मार और आसपास के बाजार के दबाव के चलते इसे बेहतर देखभाल की सख्त जरूरत है।

0: जी हाँ श्रोताओ, आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। आज हम आपके लिए ला रहे हैं अंबाला के इतिहास के कुछ पन्ने। आइए आप बात करते हैं अंबाला की थाली की, यानी स्वाद जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। दोस्तों अब बात दिल की, यानी अंबाला के खाने की, क्योंकि किसी भी शहर का इतिहास उसकी थाली में भी बसता है। अंबाला हरियाणा और पंजाब की सरहद पर बसा है, इसलिए यहाँ के खाने में दोनों परंपराओं का खूबसूरत मेल मिलता है। देसी घी, मक्खन और दूध से बनी चीजों की भरमार, यहाँ की मशहूर बाजरे की रोटी और आलू की सब्जी, स्वादिष्ट मिक्स दाल जिसमें अरहर, मूंग, मसूर और चने की दाल का मेल होता है, और बेसन मसाला रोटी जैसे व्यंजन आज भी घर घर में बनते हैं। और अंबाला छावनी के खाने की बात हो और पूरन सिंह का ढाबा का जिक्र ना हो, ये तो मुमकिन ही नहीं। कहा जाता है कि सरदार पूरन सिंह विभाजन के बाद पाकिस्तान से आकर अंबाला में बस गए और रेलवे स्टेशन के पास एक छोटे से टेंट में अपना ढाबा शुरू किया, जहां पर नॉन वेजिटेरियन डिश इतनी मशहूर हुई कि यहाँ तक कहा जाता है कि आशा भोसले जैसी हस्तियां भी यहाँ खाना खाने आई। आज उनके नाम पर अंबाला में कई सारे ढाबे चल रहे हैं। ये उनकी लोकप्रियता का ही सबूत है, भले ही असली पूरन सिंह के ढाबे को लेकर आज भी लोगों में बहस होती रहती है।
1: जीटी रोड किनारे बसे यह ढाबे सदियों पुरानी उस परंपरा का हिस्सा है, जब यह रास्ता व्यापारियों और यात्रियों का मुख्य मार्ग हुआ करता था। और आज भी अंबाला की गलियां गर्मा गर्म जलेबी और गुलाब जामुन की खुशबू से गुलजार

0: श्रोताओं, आज के इस अंतिम बाइट में हम बात करेंगे साइंस सिटी की। कम लोग जानते हैं ये तथ्य, और अब वो तथ्य जो शायद अंबाला के बाहर बहुत कम लोग जानते हैं। अंबाला को साइंस सिटी ऑफ इंडिया यानी भारत का विज्ञान शहर भी कहा जाता है। जी हाँ, ये सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन अंबाला छावनी में सन 1914 से वैज्ञानिक और सर्जिकल उपकरण बनाने का काम चल रहा है। आज यहाँ 2000 से ज्यादा छोटी बड़ी इकाइयां, माइक्रोस्कोप, ग्लासवेयर, प्रयोगशाला उपकरण और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाती है, जो न सिर्फ भारत के स्कूल, कॉलेजों और अस्पतालों में बल्कि DRDO जैसे संस्थान और दुनिया भर के देशों में भी भेजे जाते हैं। ये उद्योग हर साल लगभग 3,000 करोड़ रुपए का कारोबार करता है और 20,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिलता है। और हाँ, ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमें और सभी अंबाला वासियों को इस बात पे गर्व है कि जो गत वर्ष में भारत देश का चंद्रयान मिशन कामयाब हुआ, उसमें भी अंबाला की साइंस सिटी की ओर से कुछ पुर्जे बना के भेजे गए थे।
1: तो दोस्तों, अंबाला सिर्फ छावनी और जंक्शन नहीं, ये विज्ञान और उद्योग का भी एक खामोश लेकिन ताकतवर केंद्र है।
0: तो दोस्तों, ये थी अंबाला के इतिहास की एक झलक। 1857 के विद्रोह की गूंज से लेकर रानी के तालाब की लहरों तक, कोस मीनार के खंडरों से लेकर पूरन सिंह के ढाबे की खुशबू तक और साइंस सिटी की पहचान तक, ये शहर सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि सदियों की एक जीती जागती कहानी है। आप हमें अपने सुझाव, अपनी यादें और अंबाला से जुड़े किसे भी भेज सकते हैं, जो हम आगे आने वाले एपिसोड्स में आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये इतिहास सिर्फ किताबों का नहीं, आप सबका भी है। और ये जानकारी हमने जो हासिल की, अगर इसमें कोई त्रुटि है, उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। आइए कुछ पंक्तियों से इस इतिहास की जानकारी का हम समापन करते हैं। पंक्तियां यूं है, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, अंबा देवी के आंचल में महका इतिहास मनोहर, प्रथम क्रांति की ज्वाला बनकर जो भारत पर छाया, उस अंबाला की धरती ने स्वाभिमान सिखाया, उधर दूर कश्मीर घाटी से बहती निर्मल धारा, वितस्ता का रूप मनोहर, पावन बहता खारा, एक तरफ वीरित्व की माटी, दूजी और भागीरथ प्रीत, अंबाला और वितस्ता गाए भारत के गीत, इतिहास का शौर्य यहाँ है, वहां लहर का संगीत, युगो युगों से चली आ रही संस्कृति की यह रीत, युगो युगों से चली आ रही संस्कृति की यह रीत। मैं भारत सोपोरी आपसे लेता हूं विदा, लेकिन याद रखिएगा, रेडियो वितस्ता FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर हमेशा है आपका हम सफर जिंदगी का। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
1: और मुझे भी दीजिए इजाजत, आशा है आगे भी आप सभी श्रोताओं को अवगत कराते रहेंगे अंबाला के इतिहास के साथ। खुश रहिए और अपने क्षेत्र के बारे में जानते रहिए।

0: सुनिए और सुनाइए, रेडियो विविधता सुनना भूल ना जाइए। आपका रेडियो, आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज दिल से।
1: क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, अब क्या सुनाए।

0: आपने ट्यूनिंग किया है FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भरत सोपोरी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहद खास और जरूरी कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में मेरा साथ देंगे,
1: नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अनु, और आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो सीधे हमारे बच्चों के भविष्य और हमारे समाज की सेहत से जुड़ा है। वो है राष्ट्रीय पोषण माह 2026।
0: बिल्कुल अनु, यह इस साल का 9वां राष्ट्रीय पोषण माह है, और इस बार इसकी थीम रखी गई है, हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी। यह अभियान 9 सितंबर से 8 अक्टूबर 2026 तक पूरे देश में चलाया जा रहा है।
1: और श्रोताओं, इसका राष्ट्रीय स्तर पर शुभारंभ खुद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वाराणसी से किया। इससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार इस मुद्दे को कितनी गंभीरता से ले रही है।
0: अनु, सबसे पहला सवाल जो लोगों के मन में आता है, इस बार ये थीम ही क्यों चुनी गई है?
1: देखिए भारत जी, इसके पीछे एक बहुत साफ सोच है। पहले जब भी पोषण अभियान की बात होती थी तो लोग यही समझते थे कि यह सिर्फ सरकार का काम है, आंगनवाड़ी केंद्र चलाना, वहाँ खाना बंटवाना, यह सब सरकारी जिम्मेदारी है। लेकिन इस बार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने साफ संदेश दिया है कि बच्चों का सुपोषण और सर्वांगीण विकास केवल सरकार का नहीं बल्कि परिवार, समुदाय और पूरे समाज की साझा जिम्मेदारी है।
0: यानी यह सिर्फ एक जागरूकता अभियान नहीं बल्कि एक जन आंदोलन बनाने की कोशिश है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, इसीलिए थीम में हमारी शब्द जोड़ा गया, यह बताने के लिए कि आंगनवाड़ी केंद्र किसी दूर की सरकारी इमारत नहीं बल्कि हमारे अपने मोहल्ले, हमारे अपने गांव का हिस्सा है, और इसे बेहतर बनाना हम सबका काम है।
0: तो दोस्तों, अगर आपके आसपास भी कोई आंगनवाड़ी केंद्र है तो उससे अपनाइए, वहाँ जाइए, वहाँ की जरूरतों को समझिए, यही इस थीम का असली

0: तो आइए जानते हैं कि सरकार की क्या जिम्मेदारी है आंगनवाड़ी के लिए। भारत जी, अब बात करते हैं इस पूरी मुहिम में सरकार की तरफ से क्या क्या किया जा रहा है, क्योंकि जिम्मेदारी साझा तो है पर शुरुआत सरकार को ही करनी होती है।
1: बिल्कुल, सबसे पहले तो 2018 में शुरू हुआ पोषण अभियान, जिससे अब मिशन पोषण 2.0 के तहत आगे बढ़ाया जा रहा है। इसका मकसद है कुपोषण के मुद्दे को जड़ से, यानी एक जीवन चक्र दृष्टिकोण अपनाकर हल करना, गर्भवती महिला से लेकर छोटे बच्चे और किशोरियों तक।
0: और इसी के साथ चल रहा है मिशन सक्षम आंगनवाड़ी कार्यक्रम, जिसके तहत देश भर के करीब 2,00,000 आंगनवाड़ी केंद्र को हर साल करीब 40,000 की दर से सक्षम आंगनवाड़ी के रूप में अपग्रेड किया जा रहा है।
1: इसका मतलब क्या है अनु, थोड़ा समझाइए हमारे श्रोताओं को।
0: इसका मतलब है बेहतर भवन, पीने के पानी की सुविधा, चालू हालत में शौचालय, हाथ धोने के लिए साबुन, बच्चों के खेलने और सीखने के लिए बेहतर माहौल। सरकार ने तो आंगनवाड़ी भवन निर्माण की लागत भी बढ़ाई है। पहले जो राशि 12,000 रुपए थी, उसे बढ़ाकर 36,000 रुपए कर दिया गया है, ताकि केंद्र मजबूत और सुविधाजनक बन सके।
1: और गुणवत्ता की निगरानी के लिए भी कुछ नियम बनाए गए हैं ना?
0: जी हाँ, सरकार ने सभी राज्यों को दिशा निर्देश जारी किए हैं, ताकि आंगनवाड़ी केंद्रों में मिलने वाली भोजन की गुणवत्ता बनी रहे। हर जिले में जिला मजिस्ट्रेट को इसकी निगरानी के लिए नोडल अधिकारी बनाया गया है, और हर महीने एक जिला पोषण समिति की बैठक होती है, जिसमें प्रगति की समीक्षा होती है।
1: और डिजिटल निगरानी के लिए भी कुछ किया गया है?
0: बिल्कुल, पोषण ट्रैकर ऐप, यह मार्च 2021 से शुरू किया गया एक महत्वपूर्ण शासन उपकरण है, जिसके जरिए हर आंगनवाड़ी केंद्र की गतिविधियों, बच्चों के वजन, लंबाई और पोषण स्थिति का रियल टाइम डेटा दर्ज होता है। आज इस पर करोड़ों लाभार्थी पंजीकृत है।
1: यानी सरकार अब सिर्फ योजना बनाकर नहीं छोड़ रही, बल्कि उसकी निगरानी और जवाबदेही भी सुनिश्चित कर रही है।

0: आइए अब जानते हैं आंगनवाड़ी बच्चों के लिए कितनी सहयोगी हो सकती है। भारत जी, अब बात करते हैं कि यह सब बच्चों के लिए असल में कितना मायने रखता है।
1: देखिए अनु, आंगनवाड़ी केंद्र सिर्फ खाना बांटने की जगह नहीं है, ये 6 महीने से 6 साल तक के बच्चों के लिए पोषण, स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण और शुरुआती शिक्षा यानी प्रारंभिक बाल अवस्था विकास का सबसे पहला और सबसे अहम केंद्र है।
0: सही कहा, अगर किसी बच्चे को शुरुआती सालों में सही पोषण और देखभाल मिल जाए तो उसका शारीरिक और मानसिक विकास जीवन भर के लिए मजबूत नींव पर टिकता है। और यही वजह है कि कामकाजी महिलाओं के लिए भी सक्षम आंगनवाड़ी, क्रेच और सखी निवास जैसी सुविधाएं शुरू की जा रही हैं, ताकि माँ काम पर जाए तो बच्चा सुरक्षित हाथों में रहे।
1: और किशोरियों के लिए भी तो अलग से ध्यान दिया जा रहा है अनु।
0: जी हाँ, पोषण 2.0 के तहत पूर्वोत्तर और आकांक्षी जिलों में लाखों किशोरियों की पहचान की गई है, ताकि उन्हें भी इस योजना का लाभ मिले और स्कूल छोड़ने वाली बालिकाओं की संख्या में भी उल्लेखनीय गिरावट देखी गई है।
1: यानी ये सिर्फ छोटे बच्चों तक सीमित नहीं बल्कि किशोर अवस्था तक फैला हुआ एक व्यापक ढांचा है।

0: आइए अब जानते हैं जन भागीदारी और समाज की भूमिका।
1: तो भारत जी, अब सवाल यह उठता है कि हम आम नागरिक इसमें क्या योगदान दे सकते हैं?
0: बहुत कुछ अनु। सबसे पहले तो अपने आसपास के आंगनवाड़ी केंद्र से जुड़िए। अगर वहाँ पानी, शौचालय या साफ सफाई की कोई कमी दिखे तो उसे स्थानीय प्रशासन तक पहुँचाइए। बच्चों को नियमित रूप से केंद्र भेजिए। पोषण संबंधी जानकारी अपने पड़ोसियों और परिवार के साथ बांटिए।
1: और यही तो पूरी थीम का सार है, हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी। जब तक समुदाय खुद आगे बढ़कर इसे अपना नहीं मानेगा, तब तक सिर्फ सरकारी योजनाएं पूरा असर नहीं दिखा पाएंगी।
0: बिल्कुल सही, यही वजह है कि इस साल के अभियान में जन भागीदारी का केंद्र बिंदु बनाया गया है। रैली, गोद भराई, अन्नप्राशन जैसे कार्यक्रम, पोषण मेले, ये सब आयोजित किए जा रहे हैं ताकि हर परिवार इस मुहिम से सीधे जुड़ सके।
1: तो श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम से हमने जाना कि राष्ट्रीय पोषण माह 2026 सिर्फ एक सरकारी अभियान नहीं, बल्कि एक ऐसा मंच है जहां सरकार, समाज और परिवार मिलकर हमारे बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने का संकल्प लेते हैं।
0: बिल्कुल अनु, आंगनवाड़ी केंद्र मजबूत होगा तभी हमारा भविष्य यानी हमारे बच्चे मजबूत होंगे। और ये जिम्मेदारी अकेले सरकार की नहीं, हम सब की है।
1: पोषण केवल भोजन से जुड़ा विषय नहीं है, यह हमारे देश के आने वाले भविष्य और मानव संसाधन के विकास से जुड़ा मुद्दा है।
0: बिल्कुल सही, FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता के माध्यम से हम अपने सभी श्रोताओं से अपील करते हैं, अपने नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र से जुड़े और वहां उपलब्ध सरकारी सुविधाओं की जानकारी लें। गर्भवती महिलाओं और बच्चों के नियमित स्वास्थ्य जांच और टीकाकरण में सहयोग करें। पोषण अभियान को एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी मानकर अपने परिवार और आसपास जागरूकता फैलाएं।
1: क्योंकि जब हर घर सही पोषण पाएगा तभी हमारा भारत कुपोषण मुक्त और सशक्त बन पाएगा।
2: पोषण से खुशहाल बने हर बच्चा।
0: इसी जानकारी के साथ अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का। आप सुनते रहिए आपका अपना और मनपसंद रेडियो स्टेशन FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, जो आपकी जिंदगी का हम सफर है और साथ ही आपके जीवन का प्रवाह भी। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे लेते हैं हम विदा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
1: अब मुझे भी दीजिए आज्ञा, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशहाल रहिए। नमस्कार, जय हिंद।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

यू आर लिसनिंग 90.0 FM रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपुरी। आइए हम आपको विश्व धरोहर दिवस यानी वर्ल्ड हेरिटेज डे पर आप सभी को हमारे शहर अंबाला के 8 मुख्य विरासतों की अनूठी कहानियां बताते हैं। हम सबको अपने शहर के बारे में जानना चाहिए और ये काम आज FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता आपके लिए कर रहा है। विश्व धरोहर दिवस दुनिया भर की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों को समर्पित है। ये दिन हर साल 18 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। इस दिन को विश्व धरोहर दिवस के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्मारक एवं स्थल दिवस जैसे नामों से भी पुकारा जाता है। आज वर्ल्ड हेरिटेज डे पर इंडियन नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज के संयोजक रिटायर्ड कर्नल R.D. सिंह के माध्यम से अंबाला की अनूठी विरासतों की रोचक कहानियां हम आपके लिए लाए हैं। ४०० साल पुराना है रानी का तालाब। रानी के तालाब एवं मंदिर निर्माण करीब 400 साल पूर्व महाराजा पटियाला के अधीन आने वाली छछरौली रियासत के राजा रंजीत सिंह ने करवाया था। राजा ने रानी के शाही स्नान के लिए यहाँ तालाब बनवाया था, जिसमें स्नान के उपरांत यहाँ बनाए शिव मंदिर में रानी रोजाना पूजा अर्चना करती थी। साल 1999 में इस मंदिर को सेना ने अपने सुपुर्द में ले लिया था। गुरुद्वारा पंजोखरा साहिब आस्था का केंद्र। 8वें सिख गुरु हरकिशन राय से संबंधित पंजोखरा साहिब धार्मिक आस्था का केंद्र है। गुरु हरकिशन राजा जय सिंह के निमंत्रण पर कीरतपुर से दिल्ली जाते समय पंजोखरा साहिब में रुके थे। सिख इतिहास के मुताबिक गुरुद्वारे में गुरु ने अपनी बाल्यावस्था में ही गूंगे व बहरे शख्स से गीता के श्लोक कराए थे। होली रिडीमर चर्च है बेहद खूबसूरत। अंबाला कैंटोनमेंट बसने के महज 5 साल बाद यानी 1848 में बना व 1905 में नए सिरे से निर्मित होली रिडीमर चर्च करीब 115 साल बाद भी बेहद खूबसूरत है। यूरोप की गोथिक शैली में इस कैथोलिक चर्च में एक साथ 800 लोग के प्रार्थना करने की क्षमता है। इस चर्च में भारत के एकमात्र कैथोलिक वाइसराय 1880 से 1884 कोलकाता से शिमला जाते हुए आए थे। सेंट पॉल चर्च पर पाकिस्तान ने गिराए थे बम। सेंट पॉल गैरिजन चर्च का निर्माण 14 जनवरी 1852 में शुरू किया गया था, जो कि 4 जनवरी 1857 को बनकर तैयार हुआ था। 21 सितंबर 1965 को पाकिस्तान बम वर्षक विमानों ने छावनी स्थित एयरफोर्स स्टेशन को निशाने पर लिया था, लेकिन बम सेंट पॉल चर्च पर गिराए गए थे। देश के बंटवारे से पहले ये चर्च डायसिस ऑफ लाहौर की देखरेख में था। कोस मीनार, इन्हीं को देख के चलते थे सैनिक के काफिले। अंबाला शहर के रेलवे रोड पर कपड़ा मार्केट में बनी शेरशाह सूरी की कोस मीनार कभी सैनिकों और जीटी रोड से गुजरने वाले राहगीरों को राह दिखाने का काम करती थी। इस मीनार को 16वीं शताब्दी में शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था। बीते जमाने में ये संचार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। इन्हीं मीनारों को देखकर सैनिक काफिले चलते थे और डाक सिस्टम भी इन्हीं के तर्ज पर चलता था। कब्रिस्तान में दफन है अंग्रेज सैनिकों के शव। अंबाला में 1844 में बने कब्रिस्तान में प्रथम विश्व युद्ध व द्वितीय विश्व युद्ध में मारे गए अंग्रेज सैनिकों के शव दफन है। करीब 23 एकड़ में बनाए गए इस ईसाई कब्रिस्तान में 2 लाख के करीब कब्र थे। हर कब्र का अपना एक इतिहास है। यहाँ आज भी अंग्रेज अपने पुरखों की तलाश में आते हैं। प्राचीन अंबिका देवी मंदिर में 250 साल से जल रही है ज्योति।
पिंडी रूप में विराजमान प्राचीन माता अंबिका देवी मंदिर के इतिहास का कोई साक्ष्य प्रमाण नहीं है, लेकिन मंदिर में पिछले करीब 250 साल से मां की ज्योति निरंतर जल रही है। पुराणों में जिक्र और आस्था से जुड़े होने के कारण नवरात्र के मौके पर यहां शीश झुकाने के लिए दूर दराज से श्रद्धालु पहुंचते हैं।

ये जानकारी हमें मिली अम्बाला के एक मुख्य समाचार पत्र से। आने वाले दिनों में हम और रिसर्च कर आपको पूरी जानकारी हर एक हेरिटेज के बारे में देते रहेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे युवा और सभी लोग अम्बाला की धरोहर के बारे में जाने। हम प्रयासरत हैं और हम हर दिन कोशिश करते हैं कुछ नया करने की। अब मुझे दीजिए इजाजत, आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए और सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का फ्रीक्वेंसी 90.0 पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।

0: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010।

0: 7054410100 पर वितस्ता रेडियो आपके जीवन का प्रवाह।
1: सुनिए लता मंगेशकर और नितिन मुकेश के सुरों की सौगात, जो हर बार छू जाते हैं दिल के जज्बात। इनके आवाजों में है एक अलग ही असर, जो बना देती है हर पल को हसीन और बेहतर। तो आइए सुनते हैं नितिन मुकेश और लता मंगेशकर जी के दिल छूने वाले नगमे हमारे FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर, और साथ ही आनंद लीजिए इस संगीत के सफर का।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

सुनिए और सुनाइए, रेडियो विविधता सुनना भूल ना जाइए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

0: रेडियो वितस्ता एफएम 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामना संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर। क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी, आज ही आप अपना विज्ञापन एफएम 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। एफएम 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूं।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7054130010 पर। वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह।

0: आपने ट्यून इन किया है एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह जो करता है प्रसारण अंबाला छावनी से। और आज का सफर थोड़ा अलग है। आज हम शहर से बाहर नहीं बल्कि अपने ही शहर की गलियों में, अपने ही अतीत में झांकने वाले हैं। मैं हूं आपका रेडियो हमसफर भरत सोपोरी। मेरा दिल की गहराइयों से सभी अंबाला वासियों को और श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार।
1: मेरा भी प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अनु। इस सफर में आपके साथ रहूंगी।
0: अंबाला सिर्फ एक कैंट टाउन नहीं, सिर्फ एक जंक्शन नहीं, बल्कि एक ऐसी धरती है जिसने आजादी की पहली चिंगारी देखी, जिसने सैकड़ों साल पुराने तालाबों से शहर की प्यास बुझाई और जिसकी गलियों की खुशबू आज भी पूरे उत्तर भारत को बुलाती है। तो चलिए शुरू करते हैं अंबाला की कहानी अंबाला के शब्दों में। बात करते हैं नाम और नींव, अंबाला कहां से आया। सबसे पहले बात उस सवाल की जो हर अंबाला वासी से कभी न कभी पूछा गया हो, अंबाला नाम आया कहां से। इतिहासकार बताते हैं कि इस शहर को 14वीं सदी में अंबा राजपूत नाम के एक सरदार ने बसाया था और माना जाता है कि शहर का नाम उन्हीं के नाम पर पड़ा। एक दूसरी मान्यता ये भी है कि ये नाम देवी भवानी अंबा के नाम से जुड़ा है, जिनका एक प्राचीन मंदिर आज भी इस शहर में मौजूद है। और एक तीसरी दिलचस्प कहानी ये भी कही जाती है कि इस इलाके में कभी आमों के बाग हुआ करते थे।
1: अब ये पूरे यकीन से नहीं कहा जा सकता कि इनमें से कौन सी कहानी 100% सही है। इतिहास में अक्सर कई किंवदंतियां साथ साथ चलती हैं, लेकिन इतना जरूर तय है कि ये धरती बहुत पुरानी है। यहाँ हुई खुदाइयों और मिले पाषाण उपकरणों से इतिहासकार यह मानते हैं कि ये क्षेत्र हड़प्पा सभ्यता के दौर में ही बसा हुआ था और महाभारत काल से भी इसका नाता जोड़ा जाता है। तो दोस्तों, अंबाला की मिट्टी में सदियों की परतें दबी हैं और अब बात करते हैं उस अध्याय की जिस पर हर अंबाला वासी को गर्व।

0: 1857, वो सुबह जो मेरठ से पहले अंबाला में उगी। दोस्तों, स्कूल की किताबों में हमने पढ़ा है कि 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम अंबाला से शुरू हुआ। इसके शोध में जाने माने इतिहासकार डॉक्टर केसी यादव जैसे शोधकर्ता शामिल है। ये दावा करते हैं कि इस विद्रोह की असली शुरुआत अंबाला छावनी से हुई थी, मेरठ से भी कुछ घंटे पहले। तारीख थी 10 मई 1857, दिन रविवार। कहा जाता है कि सुबह करीब 9 बजे अंबाला में तैनात 60वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने खुले आम बगावत का बिगुल बजा दिया और उसके कुछ घंटों बाद दोपहर में 5वीं नेटिव इन्फेंट्री भी उनके साथ आ खड़ी हुई। ये मेरठ की घटना से करीब 9 घंटे पहले की बात मानी जाती है। हालांकि अंग्रेज फौज सतर्क थी, इसलिए इस विद्रोह को उसी वक्त कुचल दिया गया। बाद में अप्रैल 1858 से मई 1858 के बीच अंबाला में 26 से ज्यादा सिपाहियों और सैनिकों को फांसी दी गई।
1: ये बताना जरूरी है कि 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहां शुरू हुआ, ये विषय इतिहासकारों के बीच आज भी चर्चा और शोध का विषय है। और हरियाणा सरकार व कई स्थानीय इतिहासकार अंबाला के इस दावे को मजबूती से आगे रखते हैं। इसी को यादगार बनाने के लिए अंबाला छावनी में जीटी रोड के पास रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर शहीद स्मारक बनाया जा रहा है। 22 एकड़ में फैला यह स्मारक, जिसमें 1.63 मीटर ऊंचा कमल के आकार का टावर है और इसके संग्रहालय में 22 गैलरियों के जरिए 1857 की पूरी कहानी अंबाला में विद्रोह की शुरुआत से लेकर हरियाणा भर में इसके फैलाव और देश भर के शहीदों तक दिखाई जाए।
0: तो दोस्तों, जब भी आप उस शहीद स्मारक के पास से गुजरें, याद रखिएगा, ये सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं बल्कि उन गुमनाम सिपाहियों की कुर्बानी की गवाही है, जिन्हें इतिहास ने अब तक वो जगह नहीं दी जो मिलनी चाहिए थी।
2: 57 की चिंगारी से आज की उड़ान अंबाला तो लिखता रहे।
0: अब बात करते हैं अंबाला छावनी जंक्शन की, पटरियों पर बसा इतिहास। अब बात करते हैं अंबाला की उस पहचान की, जिससे होकर हर दिन हजारों यात्री गुजरते हैं, अंबाला छावनी रेलवे जंक्शन। इस स्टेशन का इतिहास 1891 से जुड़ा है, जब ये अस्तित्व में आया, और तभी से ये उत्तर भारत के सबसे व्यस्त और सबसे पुराने जंक्शनों में गिना जाता रहा है। आज ये हरियाणा का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है और दिल्ली कालका लाइन, मुरादाबाद अंबाला लाइन, अंबाला अटारी लाइन जैसे कई महत्वपूर्ण रेल लाइनों का संगम बिंदु है। 7 प्लेटफॉर्म और 10 पटरियों वाला ये जंक्शन देश के व्यस्ततम स्टेशनों में शुमार किया जाता है।
1: यहाँ एक बात साफ कर देना जरूरी समझती हूँ, अंबाला के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि यह भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है, लेकिन तथ्यों की बात करें तो भारत का सबसे पहला रेलवे स्टेशन 1853 में मुंबई के बोरी बंदर से शुरू हुआ था। अंबाला छावनी जंक्शन जरूर उत्तर भारत के सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण स्टेशनों में से एक है और 19वीं सदी के अंत से ही ये इस क्षेत्र का प्रमुख यातायात केंद्र रहा है। लेकिन जब हम इतिहास बता रहे हो तो सही तथ्य बताना ही हमारा फर्ज है, इसलिए हम कहेंगे अंबाला जंक्शन भारत के सबसे पुराने और सबसे व्यस्त रेलवे केंद्रों में से एक है, ना कि सबसे पुराना।

0: अब हम बात करते हैं मंदिर, तालाब और मील के पत्थर की विरासत, जो आज भी जीवित है। अंबाला की विरासत सिर्फ किताबों में ही नहीं, बल्कि आज भी शहर की गलियों में सांस लेती है। चलिए इनमें से कुछ जगहों की आप सभी को सैर कराते हैं। सबसे पहले रानी का तालाब। अंबाला छावनी में स्थित यह लगभग 400 साल पुराना तालाब कहा जाता है, जिसको महाराजा रंजीत सिंह के दौर में बनवाया गया था। कहा जाता है कि उस दौर में दो तालाब खुदवाए गए थे, राजा का तालाब और रानी का तालाब। समय के साथ साथ राजा का तालाब अब पटेल पार्क में बदल चुका है, लेकिन रानी का तालाब आज भी अपने मूल रूप में मौजूद है, जिसके पास शिव मंदिर और देवी मंदिर है और जिसकी देखभाल आज भारतीय सेना करती है। पास ही ठाकुर द्वारा मंदिर भी है, जो सिख गुरु गुरबख्श सिंह की स्मृति में बनवाया गया बताया जाता है, और भगवान वामन का एक मंदिर भी है, जहां दशहरे पर सालाना मेला लगता है। इसके अलावा शहर में भवानी अम्बा माता का मंदिर और अंबिका देवी मंदिर जैसे प्राचीन मंदिर भी है, जो शहर की धार्मिक विरासत की कहानी कहते हैं।
1: अब बात कोस मीनार की। ये मुगल कालीन मील के पत्थर जैसी मीनारें जीटी रोड के किनारे किनारे यात्रियों को दूरी बताने के लिए बनवाई गई थी, और ये परंपरा शेर शाह सूरी के दौर से जुड़ी मानी जाती है। अंबाला में मौजूद यह कोस मीनार आज भी प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम के तहत एक संरक्षित स्मारक है। हालांकि वक्त की मार और आसपास के बाजार के दबाव के चलते इसे बेहतर देखभाल की सख्त जरूरत है।

0: जी हाँ श्रोताओं, आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। आज हम आपके लिए ला रहे हैं अंबाला के इतिहास के कुछ पन्ने। आइए आप बात करते हैं अंबाला की थाली की, यानी स्वाद जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। दोस्तों अब बात दिल की, यानी अंबाला के खाने की, क्योंकि किसी भी शहर का इतिहास उसकी थाली में भी बसता है। अंबाला हरियाणा और पंजाब की सरहद पर बसा है, इसलिए यहाँ के खाने में दोनों परंपराओं का खूबसूरत मेल मिलता है। देसी घी, मक्खन और दूध से बनी चीजों की भरमार, यहाँ की मशहूर बाजरे की रोटी और आलू की सब्जी, स्वादिष्ट मिक्स दाल जिसमें अरहर, मूंग, मसूर और चने की दाल का मेल होता है, और बेसन मसाला रोटी जैसे व्यंजन आज भी घर घर में बनते हैं। और अंबाला छावनी के खाने की बात हो और पूरन सिंह का ढाबा का जिक्र ना हो, ये तो मुमकिन ही नहीं। कहा जाता है कि सरदार पूरन सिंह विभाजन के बाद पाकिस्तान से आकर अंबाला में बस गए और रेलवे स्टेशन के पास एक छोटे से टेंट में अपना ढाबा शुरू किया, जहां पर नॉन वेजिटेरियन डिश इतनी मशहूर हुई कि यहाँ तक कहा जाता है कि आशा भोसले जैसी हस्तियां भी यहाँ खाना खाने आई। आज उनके नाम पर अंबाला में कई सारे ढाबे चल रहे हैं। ये उनकी लोकप्रियता का ही सबूत है, भले ही असली पूरन सिंह के ढाबे को लेकर आज भी लोगों में बहस होती रहती है।
1: जीटी रोड किनारे बसे यह ढाबे सदियों पुरानी उस परंपरा का हिस्सा है, जब यह रास्ता व्यापारियों और यात्रियों का मुख्य मार्ग हुआ करता था। और आज भी अंबाला की गलियां गर्मा गर्म जलेबी और गुलाब जामुन की खुशबू से गुलजार

0: श्रोताओं, आज के इस अंतिम बाइट में हम बात करेंगे साइंस सिटी की। कम लोग जानते हैं ये तथ्य, और अब वो तथ्य जो शायद अंबाला के बाहर बहुत कम लोग जानते हैं। अंबाला को साइंस सिटी ऑफ इंडिया यानी भारत का विज्ञान शहर भी कहा जाता है। जी हाँ, ये सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन अंबाला छावनी में सन 1914 से वैज्ञानिक और सर्जिकल उपकरण बनाने का काम चल रहा है। आज यहाँ 2000 से ज्यादा छोटी बड़ी इकाइयां, माइक्रोस्कोप, ग्लासवेयर, प्रयोगशाला उपकरण और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाती है, जो न सिर्फ भारत के स्कूल, कॉलेजों और अस्पतालों में बल्कि DRDO जैसे संस्थान और दुनिया भर के देशों में भी भेजे जाते हैं। यह उद्योग हर साल लगभग 3,000 करोड़ रुपए का कारोबार करता है और 20,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिलता है। और हाँ, ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमें और सभी अंबाला वासियों को इस बात पे गर्व है कि जो गत वर्ष में भारत देश का चंद्रयान मिशन कामयाब हुआ, उसमें भी अंबाला की साइंस सिटी की ओर से कुछ पुर्जे बना के भेजे गए थे।
1: तो दोस्तों, अंबाला सिर्फ छावनी और जंक्शन नहीं, ये विज्ञान और उद्योग का भी एक खामोश लेकिन ताकतवर केंद्र है।
0: तो दोस्तों, ये थी अंबाला के इतिहास की एक झलक। 1857 के विद्रोह की गूंज से लेकर रानी के तालाब की लहरों तक, कोस मीनार के खंडरों से लेकर पूरन सिंह के ढाबे की खुशबू तक और साइंस सिटी की पहचान तक, ये शहर सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि सदियों की एक जीती जागती कहानी है। आप हमें अपने सुझाव, अपनी यादें और अंबाला से जुड़े किसे भी भेज सकते हैं, जो हम आगे आने वाले एपिसोड्स में आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये इतिहास सिर्फ किताबों का नहीं, आप सबका भी है। और ये जानकारी हमने जो हासिल की, अगर इसमें कोई त्रुटि है, उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। आइए कुछ पंक्तियों से इस इतिहास की जानकारी का हम समापन करते हैं। पंक्तियां यूं है, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, अंबा देवी के आंचल में महका इतिहास मनोहर, प्रथम क्रांति की ज्वाला बनकर जो भारत पर छाया, उस अंबाला की धरती ने स्वाभिमान सिखाया, उधर दूर कश्मीर घाटी से बहती निर्मल धारा, वितस्ता का रूप मनोहर, पावन बहता खारा, एक तरफ वीरित्व की माटी दूजी और भागीरथ प्रीत, अंबाला और वितस्ता गाए भारत के गीत, इतिहास का शौर्य यहाँ है वहां लहर का संगीत, युगो युगों से चली आ रही संस्कृति की यह रीत, युगो युगो से चली आ रही संस्कृति की यह रीत। मैं भारत सोपोरी आपसे लेता हूं विदा, लेकिन याद रखिएगा, रेडियो वितस्ता FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर हमेशा है आपका हम सफर जिंदगी का। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
1: और मुझे भी दीजिए इजाजत, आशा है आगे भी आप सभी श्रोताओं को अवगत कराते रहेंगे अंबाला के इतिहास के साथ। खुश रहिए और अपने क्षेत्र के बारे में जानते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।
1: नाइन्टी पॉइंट जीरो मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। सुनते रहिए दिल से।

0: एक ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज पर। अम्बाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मले दियो 7056413010 पा फोन।

0: एक ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ ढाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: ही दालच महल, एक है लता मंगेशकर, एक है रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारे ये प्रसारण, सुनते रहिए दिल से।
2: रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामना संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।

पेश है कार्यक्रम सरगम एपिसोड 5। पेश करेंगे आरजे गिरनी, रिकॉर्ड किया राहुल लियान ने, एडिट व निर्देशन भारत सोपोरी।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता। सभी दोस्तों को किरणी का प्यार भरा नमस्कार और लेकर आई हूँ सरगम का एक और अंक। और प्रोग्राम की शुरुआत हम कर रहे हैं फिल्म सिलसिला के गाने से, जिसे गाया है अमिताभ बच्चन और लता मंगेशकर ने, जिसके बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने और म्यूजिक से सजाया है शिव हरी ने।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं।

अब आपकी नजर है राजेंद्र कृष्ण के लिखे बोल, जिसे अपने म्यूजिक से सजाया है कल्याण जी आनंद जी ने और गाया है मोहम्मद रफी और आशा भोसले ने। फिल्म का नाम है प्रोफेसर प्यारेलाल।

लीजिए आप सुनते हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में ओपी नायर का संगीतबद्ध गीत, जिसके बोल लिखे हैं SH बिहारी ने और फिल्म का नाम है कश्मीर की कली।

लीजिए आप सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में फिल्म मुकद्दर का सिकंदर का गाना, जिसके बोल लिखे हैं अनजान ने और म्यूजिक दिया है कल्याण जी आनंद जी ने।

अगली पेशकश है बप्पी लहरी का संगीतबद्ध किया गाना, जिसे गाया है शैलेंद्र सिंह और लता मंगेशकर ने, और जिसके बोल लिखे हैं अमित खन्ना ने, और फिल्म का नाम है चलते चलते।

कार्यक्रम का अगला नगमा है फिल्म फागुन से, जिसे गाया है आशा भोसले और मोहम्मद रफी ने, जिसको म्यूजिक से सजाया है ओपी नायर ने और उसके बोल लिखे हैं कमर जलालाबादी ने।

अब आपके नजर है ये एक और नगमा जिसे गाया है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने। फिल्म का नाम है अजनबी और इसके बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और इसको म्यूजिक से सजाया है आर डी बर्मन ने।

0: क्या सोच रही हो?
1: मैं?
0: हाँ हाँ
1: कुछ भी तो नहीं।
0: बोलो ना कुछ तो।
2: ऐसा ना हो तू कभी छोड़ दे मेरा साथ,
0: फिर ना कभी कह।

कार्यक्रम की आखिरी पेशकश है फिल्म हरे कृष्णा हरे रामा से, जिसके बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने, जिसको गाया है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने, और अपने म्यूजिक से सजाया है आरडी बर्मन ने।

इस गाने के साथ ही आज का सरगम कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है और अपना फीडबैक भेजते रहिए 7056413010 पर। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम सरगम एपिसोड 5, पेश किया आरजे गिरनी ने, रिकॉर्ड किया राहुल ललियान ने, एडिट व निर्देशन भारत सुपोरी। ये थी FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता की प्रस्तुति।

0: आपने ट्यून इन किया है एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का आपके जीवन का प्रवाह जो करता है प्रसारण अंबाला छावनी से। और आज का सफर थोड़ा अलग है, आज हम शहर से बाहर नहीं बल्कि अपने ही शहर की गलियों में, अपने ही अतीत में झांकने वाले हैं। मैं हूं आपका रेडियो हमसफर भरत सोपोरी, मेरा दिल की गहराइयों से सभी अंबाला वासियों को और श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार।
1: मेरा भी प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अनु, इस सफर में आपके साथ रहूंगी।
0: अंबाला सिर्फ एक कैंट टाउन नहीं, सिर्फ एक जंक्शन नहीं, बल्कि एक ऐसी धरती है जिसने आजादी की पहली चिंगारी देखी, जिसने सैकड़ों साल पुराने तालाबों से शहर की प्यास बुझाई और जिसकी गलियों की खुशबू आज भी पूरे उत्तर भारत को बुलाती है। तो चलिए शुरू करते हैं अंबाला की कहानी अंबाला के शब्दों में। बात करते हैं नाम और नींव, अंबाला कहां से आया। सबसे पहले बात उस सवाल की जो हर अंबाला वासी से कभी न कभी पूछा गया हो, अंबाला नाम आया कहां से। इतिहासकार बताते हैं कि इस शहर को 14वीं सदी में अम्बा राजपूत नाम के एक सरदार ने बसाया था और माना जाता है कि शहर का नाम उन्हीं के नाम पर पड़ा। एक दूसरी मान्यता ये भी है कि ये नाम देवी भवानी अम्बा के नाम से जुड़ा है, जिनका एक प्राचीन मंदिर आज भी इस शहर में मौजूद है। और एक तीसरी दिलचस्प कहानी ये भी कही जाती है कि इस इलाके में कभी आमू के बाग हुआ करते थे।
1: अब ये पूरे यकीन से नहीं कहा जा सकता कि इनमें से कौन सी कहानी 100% सही है। इतिहास में अक्सर कई किंवदंतियां साथ साथ चलती हैं, लेकिन इतना जरूर तय है कि ये धरती बहुत पुरानी है। यहाँ हुई खुदाइयों और मिले पाषाण उपकरणों से इतिहासकार यह मानते हैं कि ये क्षेत्र हड़प्पा सभ्यता के दौर में ही बसा हुआ था और महाभारत काल से भी इसका नाता जोड़ा जाता है। तो दोस्तों, अंबाला की मिट्टी में सदियों की परतें दबी हैं और अब बात करते हैं उस अध्याय की जिस पर हर अंबालावासी को गर्व।

0: 1857, वो सुबह जो मेरठ से पहले अंबाला में उगी। दोस्तों, स्कूल की किताबों में हमने पढ़ा है कि 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम अंबाला से शुरू हुआ। इसके शोध में जाने माने इतिहासकार डॉक्टर केसी यादव जैसे शोधकर्ता शामिल है। ये दावा करते हैं कि इस विद्रोह की असली शुरुआत अंबाला छावनी से हुई थी, मेरठ से भी कुछ घंटे पहले। तारीख थी 10 मई 1857, दिन रविवार। कहा जाता है कि सुबह करीब 9 बजे अंबाला में तैनात 60वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने खुलेआम बगावत का बिगुल बजा दिया और उसके कुछ घंटों बाद दोपहर में 5वीं नेटिव इन्फेंट्री भी उनके साथ आ खड़ी हुई। ये मेरठ की घटना से करीब 9 घंटे पहले की बात मानी जाती है। हालांकि अंग्रेज फौज सतर्क थी, इसलिए इस विद्रोह को उसी वक्त कुचल दिया गया। बाद में अप्रैल 1858 से मई 1858 के बीच अंबाला में 26 से ज्यादा सिपाहियों और सैनिकों को फांसी दी गई।
1: ये बताना जरूरी है कि 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ, ये विषय इतिहासकारों के बीच आज भी चर्चा और शोध का विषय है। और हरियाणा सरकार व कई स्थानीय इतिहासकार अंबाला के इस दावे को मजबूती से आगे रखते हैं। इसी को यादगार बनाने के लिए अंबाला छावनी में जीटी रोड के पास रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर शहीद स्मारक बनाया जा रहा है। 22 एकड़ में फैला यह स्मारक, जिसमें 1.63 मीटर ऊंचा कमल के आकार का टावर है और इसके संग्रहालय में 22 गैलरियों के जरिए 1857 की पूरी कहानी अंबाला में विद्रोह की शुरुआत से लेकर हरियाणा भर में इसके फैलाव और देश भर के शहीदों तक दिखाई जाएगी।
0: तो दोस्तों, जब भी आप उस शहीद स्मारक के पास से गुजरें, याद रखिएगा, ये सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं बल्कि उन गुमनाम सिपाहियों की कुर्बानी की गवाही है, जिन्हें इतिहास ने अब तक वो जगह नहीं दी जो मिलनी चाहिए थी।
2: 57 की चिंगारी से आज की उड़ान अंबाला तो लिखता रहे।
0: अब बात करते हैं अंबाला छावनी जंक्शन की, पटरियों पर बसा इतिहास। अब बात करते हैं अंबाला की उस पहचान की, जिससे होकर हर दिन हजारों यात्री गुजरते हैं, अंबाला छावनी रेलवे जंक्शन। इस स्टेशन का इतिहास 1891 से जुड़ा है, जब ये अस्तित्व में आया, और तभी से ये उत्तर भारत के सबसे व्यस्त और सबसे पुराने जंक्शनों में गिना जाता रहा है। आज ये हरियाणा का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है और दिल्ली कालका लाइन, मुरादाबाद अंबाला लाइन, अंबाला अटारी लाइन जैसे कई महत्वपूर्ण रेल लाइनों का संगम बिंदु है। 7 प्लेटफॉर्म और 10 पटरियों वाला ये जंक्शन देश के व्यस्ततम स्टेशनों में शुमार किया जाता है।
1: यहाँ एक बात साफ कर देना जरूरी समझती हूँ। अंबाला के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि यह भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है, लेकिन तथ्यों की बात करें तो भारत का सबसे पहला रेलवे स्टेशन 1853 में मुंबई के बोरी बंदर से शुरू हुआ था। अंबाला छावनी जंक्शन जरूर उत्तर भारत के सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण स्टेशनों में से एक है और 19वीं सदी के अंत से ही ये इस क्षेत्र का प्रमुख यातायात केंद्र रहा है। लेकिन जब हम इतिहास बता रहे हों तो सही तथ्य बताना ही हमारा फर्ज है, इसलिए हम कहेंगे अंबाला जंक्शन भारत के सबसे पुराने और सबसे व्यस्त रेलवे केंद्रों में से एक है, ना कि सबसे पुराना।

0: अब हम बात करते हैं मंदिर, तालाब और मील के पत्थर की विरासत, जो आज भी जीवित है। अम्बाला की विरासत सिर्फ किताबों में ही नहीं, बल्कि आज भी शहर की गलियों में सांस लेती है। चलिए इनमें से कुछ जगहों की आप सभी को सैर कराते हैं। सबसे पहले रानी का तालाब। अम्बाला छावनी में स्थित यह लगभग 400 साल पुराना तालाब कहा जाता है, जिसको महाराजा रंजीत सिंह के दौर में बनवाया गया था। कहा जाता है कि उस दौर में दो तालाब खुदवाए गए थे, राजा का तालाब और रानी का तालाब। समय के साथ साथ राजा का तालाब अब पटेल पार्क में बदल चुका है, लेकिन रानी का तालाब आज भी अपने मूल रूप में मौजूद है, जिसके पास शिव मंदिर और देवी मंदिर है और जिसकी देखभाल आज भारतीय सेना करती है। पास ही ठाकुर द्वारा मंदिर भी है, जो सिख गुरु गुरबख्श सिंह की स्मृति में बनवाया गया बताया जाता है। और भगवान वामन का एक मंदिर भी है, जहां दशहरे पर सालाना मेला लगता है। इसके अलावा शहर में भवानी अम्बा माता का मंदिर और अंबिका देवी मंदिर जैसे प्राचीन मंदिर भी है, जो शहर की धार्मिक विरासत की कहानी कहते हैं।
1: अब बात कोस मीनार की। ये मुगल कालीन मील के पत्थर जैसी मीनारें जीटी रोड के किनारे किनारे यात्रियों को दूरी बताने के लिए बनवाई गई थी, और ये परंपरा शेर शाह सूरी के दौर से जुड़ी मानी जाती है। अम्बाला में मौजूद यह कोस मीनार आज भी प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम के तहत एक संरक्षित स्मारक है। हालांकि वक्त की मार और आसपास के बाजार के दबाव के चलते इसे बेहतर देखभाल की सख्त जरूरत है।

0: जी हाँ श्रोताओं, आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। आज हम आपके लिए ला रहे हैं अंबाला के इतिहास के कुछ पन्ने। आइए आप बात करते हैं अंबाला की थाली की, यानी स्वाद जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। दोस्तों अब बात दिल की, यानी अंबाला के खाने की, क्योंकि किसी भी शहर का इतिहास उसकी थाली में भी बसता है। अंबाला हरियाणा और पंजाब की सरहद पर बसा है, इसलिए यहाँ के खाने में दोनों परंपराओं का खूबसूरत मेल मिलता है। देसी घी, मक्खन और दूध से बनी चीजों की भरमार, यहाँ की मशहूर बाजरे की रोटी और आलू की सब्जी, स्वादिष्ट मिक्स दाल जिसमें अरहर, मूंग, मसूर और चने की दाल का मेल होता है, और बेसन मसाला रोटी जैसे व्यंजन आज भी घर घर में बनते हैं। और अंबाला छावनी के खाने की बात हो और पूरन सिंह का ढाबा का जिक्र ना हो, ये तो मुमकिन ही नहीं। कहा जाता है कि सरदार पूरन सिंह विभाजन के बाद पाकिस्तान से आकर अंबाला में बस गए और रेलवे स्टेशन के पास एक छोटे से टेंट में अपना ढाबा शुरू किया, जहां पर नॉन वेजिटेरियन डिश इतनी मशहूर हुई कि यहाँ तक कहा जाता है कि आशा भोसले जैसी हस्तियां भी यहाँ खाना खाने आई। आज उनके नाम पर अंबाला में कई सारे ढाबे चल रहे हैं। ये उनकी लोकप्रियता का ही सबूत है, भले ही असली पूरन सिंह के ढाबे को लेकर आज भी लोगों में बहस होती रहती है।
1: जीटी रोड किनारे बसे यह ढाबे सदियों पुरानी उस परंपरा का हिस्सा है, जब यह रास्ता व्यापारियों और यात्रियों का मुख्य मार्ग हुआ करता था। और आज भी अंबाला की गलियां गर्मा गर्म जलेबी और गुलाब जामुन की खुशबू से गुलजार

0: श्रोताओं, आज के इस अंतिम बाइट में हम बात करेंगे साइंस सिटी की। कम लोग जानते हैं ये तथ्य, और अब वो तथ्य जो शायद अंबाला के बाहर बहुत कम लोग जानते हैं। अंबाला को साइंस सिटी ऑफ इंडिया यानी भारत का विज्ञान शहर भी कहा जाता है। जी हाँ, ये सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन अंबाला छावनी में सन 1914 से वैज्ञानिक और सर्जिकल उपकरण बनाने का काम चल रहा है। आज यहाँ 2000 से ज्यादा छोटी बड़ी इकाइयां, माइक्रोस्कोप, ग्लासवेयर, प्रयोगशाला उपकरण और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाती है, जो न सिर्फ भारत के स्कूल, कॉलेजों और अस्पतालों में बल्कि DRDO जैसे संस्थान और दुनिया भर के देशों में भी भेजे जाते हैं। यह उद्योग हर साल लगभग 3,000 करोड़ रुपए का कारोबार करता है और 20,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिलता है। और हाँ, ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमें और सभी अंबाला वासियों को इस बात पे गर्व है कि जो गत वर्ष में भारत देश का चंद्रयान मिशन कामयाब हुआ, उसमें भी अंबाला की साइंस सिटी की ओर से कुछ पुर्जे बना के भेजे गए थे।
1: तो दोस्तों, अंबाला सिर्फ छावनी और जंक्शन नहीं, ये विज्ञान और उद्योग का भी एक खामोश लेकिन ताकतवर केंद्र है।
0: तो दोस्तों, ये थी अंबाला के इतिहास की एक झलक, 1857 के विद्रोह की गूंज से लेकर रानी के तालाब की लहरों तक, कोस मीनार के खंडरों से लेकर पूरन सिंह के ढाबे की खुशबू तक और साइंस सिटी की पहचान तक। ये शहर सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि सदियों की एक जीती जागती कहानी है। आप हमें अपने सुझाव, अपनी यादें और अंबाला से जुड़े किसे भी भेज सकते हैं, जो हम आगे आने वाले एपिसोड्स में आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये इतिहास सिर्फ किताबों का नहीं, आप सबका भी है। और ये जानकारी हमने जो हासिल की, अगर इसमें कोई त्रुटि है, उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। आइए कुछ पंक्तियों से इस इतिहास की जानकारी का हम समापन करते हैं। पंक्तियां यूं है, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, अंबा देवी के आंचल में महका इतिहास मनोहर, प्रथम क्रांति की ज्वाला बनकर जो भारत पर छाया, उस अंबाला की धरती ने स्वाभिमान सिखाया, उधर दूर कश्मीर घाटी से बहती निर्मल धारा, वितस्ता का रूप मनोहर, पावन बहता खारा, एक तरफ वीरित्व की माटी दूजी और भागीरथ प्रीत, अंबाला और वितस्ता गाए भारत के गीत, इतिहास का शौर्य यहाँ है वहां लहर का संगीत, युगो युगों से चली आ रही संस्कृति की यह रीत, युगो युगों से चली आ रही संस्कृति की यह रीत। मैं भारत सोपोरी आपसे लेता हूं विदा, लेकिन याद रखिएगा, रेडियो वितस्ता FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर हमेशा है आपका हम सफर जिंदगी का। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
1: और मुझे भी दीजिए इजाजत, आशा है आगे भी आप सभी श्रोताओं को अवगत कराते रहेंगे अंबाला के इतिहास के साथ। खुश रहिए और अपने क्षेत्र के बारे में जानते रहिए। नमस्कार, जय।

ए रहबर, बता दे किधर की तलाश है तुझे, मुझे लूटने के बाद किसको लूटना है। नमस्ते, मैं हूं रमेश मराठा।

गुलाबी मौसम में खुशबू की तरह महकते रहो। जानते ही मुस्कुराहट है तुम्हारे हुस्न का जेवर, यूं ही मुस्कुराते रहो। जब मोहब्बत तुमसे है तो ख्वाबों के आईने में हमारे बनकर रह जाओगे। आज रहने दीजिए ये गिले शिकवे, आज की शब हम न जाने देंगे, क्योंकि खुशबू बनकर आए हो एक तवील मुद्दत के बाद, यूं ही इस गुलाबी मौसम में महकते रहो हमारी खुशबू बनकर।

साथ साथ शक्लें बेशक बदल चुकी हों, पर एतबार पहले ही की तरह अटल है। सोबतें सही रास्ता दिखाती हैं और मंजिल का पता भी बताती हैं, चाहे हम दूर तक चलते रहें, अपने पीछे कदमों के निशान छोड़ ही जाते हैं, यह सोचकर कि कोई मुझे ढूंढ तो ले।

हमसे अक्सर वाबस्ता रहती हैं दर्द की दास्तानें। तुम सुनकर क्या करोगी? जो लिखा है वो मिटाया नहीं जाता है। चुप हो जाते हैं जब जब बीते लम्हों में तुम्हें खोजने की कोशिश करते हैं। ख्वाबों के इस शहर में क्या ये सब कुछ मुमकिन है जो हम तुम्हें पा सकें?

वो जो चाहती बांटते रहे सरेआम अपनी खुशियों को नीलाम करके, पर इसके बावजूद चेहरे पे मुस्कुराहट बनी रही, क्योंकि वो जीने का अंदाज जानता था।

जानता था वो दिल बहलाना, कहीं दूर पतंग की डोर पकड़कर खुले आकाश में पतंग को उड़ाने का हुनर जानता था। उसकी एक मुस्कान के लिए अपनी मुस्कुराहट फिदा करता था।

दोस्तों, आपको आज का ये प्रोग्राम कैसा लगा जरूर बताइएगा। अब चाहेंगे आपसे इजाजत। नमस्ते।

जी हाँ श्रोताओं, आप सुन रहे थे एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता के प्रसारण, और आज के हमारे प्रसारण अब यहीं पर संपन्न होते हैं। हम आपकी सेवा में सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक हर दिन रहते हैं। कोशिश करते हैं कि हम उन्हीं प्रोग्रामों को प्रसारित करें जो रखते हैं आपसे सरोकार। हम हर एक श्रोता का ध्यान रखते हैं और कोशिश करते हैं कि श्रोता जो सुनना चाहते हैं वही हम आप तक प्रसारण के माध्यम से पहुंचा सकें। आप सभी के फीडबैक का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, और ख़ास करके उन सभी श्रोताओं का जो हमारे पास अपनी फरमाइशें भेजते हैं, जो हम हर शुक्रवार को दिन के 2 बजे चलाते हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश, जो आपकी फरमाइशों पर आधारित होता है। बहुत सारे फीडबैक हमारे पास आते हैं, उन सभी श्रोताओं का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुहाना सफर, पेश कर रहे थे रमेश मरहटा। स्टूडियो की घड़ी में समय है 9:02:13। श्रोताओं, आज के इस सुरीले सफर को अब यही विराम देने का समय आ गया है। भरोसा है कि ये प्रसारण आपकी शाम में थोड़ा खुशियां और दे गया होगा और आपके दिन को यादगार बना गया होगा। दोस्तों, आज 25 सितंबर का दिन एक खास वजह से भी महत्वपूर्ण है। आज है अंत्योदय दिवस, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जयंती के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने अंत्योदय यानी समाज के सबसे अंतिम और वंचित व्यक्ति के उत्थान का जो सिद्धांत दिया, वो आज भी हमें सिखाता है कि सच्चा विकास तभी सार्थक है जब वो समाज के सबसे कमजोर वर्ग तक पहुंचे। FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की पूरी टीम की ओर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इसी भावना के साथ दोस्तों, आज बात करते हैं एक और बेहद प्रेरणादायक विषय पर, जो है छोटी छोटी प्रयासों से भी बड़ा बदलाव संभव है। हम अक्सर सोचते हैं कि बड़ा बदलाव लाने के लिए बड़े संसाधन, बड़े पद या बड़ी शक्ति चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि समाज में सबसे बड़े बदलाव अक्सर छोटे छोटे प्रयासों से ही शुरू होते हैं। एक पेड़ लगाना, किसी जरूरतमंद की मदद करना, अपने आसपास सफाई रखना या किसी को सही राह दिखाना, ये सभी छोटे छोटे कदम मिलकर एक बड़ी सकारात्मक लहर पैदा कर सकती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय का सिद्धांत भी यही सिखाता है कि बदलाव सबसे नीचे से, सबसे कमजोर व्यक्ति से शुरू होना चाहिए। अगर हर व्यक्ति अपने स्तर पर, अपने घर, अपने मोहल्ले और समाज में छोटे छोटे अच्छे काम करने लगे, तो पूरे देश की तस्वीर बदल सकती है। बड़ा बदलाव कभी एक दिन में नहीं आता, वो आता है निरंतर छोटे छोटे प्रयासों के जुड़ने से। जी हाँ दोस्तों, एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता इसी सब्जेक्ट पर काम करता है, इसी सिद्धांत पर काम करता है, और हम अंबाला के उन लोगों को जगा देते हैं, उन लोगों की आवाज को आप तक पहुंचाते हैं शायद जिनके पास आज तक कोई गया नहीं है। अभी भी अंबाला में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन तक हमें पहुंचना है। हमारी कोशिश जारी है। कई बार हम जाते हैं तो लोग बोल नहीं पाते हैं, तो जो बोलने वाले लोग हैं शायद उनके पास हम नहीं पहुंच पाते हैं, पर हमारा आप सभी से एक वादा है कि हम हर व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, चाहे फोन के माध्यम से, चाहे हम पर्सनली फील्ड में जाके उनसे, उनके कार्यस्थल पर, उनके काम पर जाके उनसे बात कर सकें। अगर आप भी ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं जिनकी बात आप सुनना चाहते हैं, जिनकी आवाज आप सुनना चाहते हैं, जिनके काम के बारे में आप सुनना चाहते हैं, तो आप जरूर हमें हमारे स्टूडियो के नंबर पर लिखें, जो हम अभी आपको लिखवाने वाले हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस टॉपिक को हमारे साथ बने रहने के लिए। अभी आपके लिए हर दिन लाता हूं 4 पंक्तियां, वो पंक्तियां आप तक अभी लेके आता हूं, और उसके बाद देता हूं कल के कार्यक्रमों का विवरण, और साथ में आपसे लेंगे आज्ञा। तो दोस्तों, आइए हम सब ये ठान लें कि चाहे हमारा योगदान कितना भी छोटा क्यों न हो, कितना भी छोटा क्यों न लगे, हम अपने हिस्से का कर्तव्य जरूर निभाएंगे, क्योंकि बूंद बूंद से ही सागर बनता है। तो आज की पंक्तियां आप सभी के नाम
आज की पंक्तियां यूं हैं, छोटी सी शुरुआत भी बड़ी इतिहास रचती है, छोटी सी शुरुआत भी बड़ा इतिहास रचती है, हर बूंद मिलकर ही तो नदी बन जाती है, वितस्ता भी तो एक छोटे झरने से निकली है, वितस्ता भी एक छोटे से चश्मे से निकली है, यही सिखाती है हर बड़ा काम छोटे कदम से चलती है। जी हां दोस्तों, यही सिखाती है हर बड़ा काम छोटे कदम से चलती है। दोस्तों ये था आज का विषय और आज की पंक्तियां। जाते जाते आपको कल के कार्यक्रमों का विवरण देता हूं। कल 26 सितंबर 2026 शनिवार को जो कार्यक्रम आपके लिए लाए हैं वो इस प्रकार है। सभा की शुरुआत होगी सुबह 5:58 पर, वंदे मातरम से हम करेंगे शुरुआत, लाएंगे आपके लिए एक सुविचार और पहली आवाज में आप सभी श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन करेंगे पंचांग के साथ। 6 सुनेंगे भक्ति संगीत, 7:05 पर होगा कार्यक्रम वितस्ता गीतमाला एपिसोड 9। कल का कार्यक्रम आधारित है धर्मराज देशराज जी के कविताओं और गजलों पर जो सीहोर मध्य प्रदेश से है। 8:30 किरणी के साथ रेडियो पॉडकास्ट का एपिसोड 15 होगा, कल होगी बात थायराइड पर। 9:30 कार्यक्रम आपसे हैं हम, पेश करेंगे आरजे शेरी और यह हमारा आर्काइव से प्रोग्राम है। 10:00 सरगम एपिसोड 7 पेश करेंगे आरजे किरणी, संगीत की सभा जारी रहेगी। 2:00 आप सुनेंगे कृषि समाचार और 6:00 भक्ति संगीत, 6:30 शाम गजल और 7:00 एक बार फिर वितस्ता गीत माला कार्यक्रम का एपिसोड 7 हम आपको सुनाएंगे, गजलें लिखी हुई जो है सुरेश चंद्र सर्वहारा जी ने। कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगे भारत सोपोरी और 8:30 हर दिन की तरह कार्यक्रम सुहाना सफर पेश करेंगे रमेश मराठा। कल की कड़ी है तन्हा तन्हा। ये था विवरण कल के कार्यक्रमों का। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कार्यक्रम भी पसंद आएंगे। आप अपना फीडबैक, अपनी जानकारी, अपनी फरमाइश हमें भेजिएगा हमारे स्टूडियो के नंबर पर जो है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। ये सारी जानकारी तैयार की थी हमारी टीम रेडियो वितस्ता के कैजुअल अनाउंसर अन्नू ने। तो श्रोताओ ये समय है अब यहां पर विराम देने का आज के सफर को। उम्मीद है ये प्रसारण आपको पसंद आया होगा और आपके दिन को थोड़ा और रोशन कर दिया होगा। अब अपने रेडियो दोस्त भरत सोपोरी को दीजिए इजाजत। FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद और सुनिए हर दिन सुबह 6:00 से 9:00 तक। कल सुबह तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।